ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्स पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौदहवीं तिथि तदनुसार दिनांक 4 जुलाई सन 2026। प्रातः के इस वक्त 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांनंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci

0: www.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का विचार। विषय है नैतिकता। वाचक सर डॉक्टर छगन महता का है।
2: नैतिकता का मानदंड क्या है? नैतिकता शब्द जिस अर्थ में प्रचलित हो रहा है, उस अर्थ में पुराने जमाने में हमारी सांस्कृतिक परंपरा में उसका प्रयोग नहीं होता था। हमारे यहाँ इस शब्द का भावार्थ दो शब्दों से प्रचलित हो रहा है। एक है सदाचार और दूसरा है लोकाचार। नैतिकता अंग्रेजी भाषा में प्रचलित शब्द मॉरेलिटी का हिंदी अनुवाद है, जो मॉरल का विशेषण है, जिसका मतलब लोकसम्मत श्रेष्ठाचरण ही होता है। प्रत्येक लोकसम्मत श्रेष्ठाचार या लोकाचार देशकाल और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, परंतु लोकाचार का मूल सदाचार ही होता है, जो शाश्वत होने के कारण कभी नहीं बदलता। किसी भी लोकाचार में सदाचार पूरी तरह से प्रतिफलित नहीं होता, इसलिए किसी न किसी अंश में किसी देश विशेष या काल विशेष में प्रचलित और परिस्थिति विशेष में व्यक्ति द्वारा आश्रित व्यवहार में और सदाचार में अंतर विरोध पाया जाता है। इसलिए जहाँ हम नैतिकता के मूल प्रश्न पर विचार करें तो उसकी सार्वभौमिकता सर्वकालिकता के आधार को ध्यान में रखकर सदाचार को ही वास्तविक नैतिकता मानना चाहिए और उसी पर विचार करना चाहिए। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि उस सदाचार की कसौटी क्या हो। इसका उत्तर हमारी संस्कृति के बुनियादी चिंतक महर्षि व्यास के शब्दों में आत्मने प्रतिकूलानि परेशामना समाचरेत, इस निषेधात्मक उक्ति के द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि जिस आचरण या व्यवहार को व्यक्ति अपने लिए प्रतिकूल समझता है, उस प्रकार के व्यवहार को उसे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इस सूत्र की व्यंजना निषेधात्मक है, विधेयात्मक नहीं है, और ये निषेधात्मकता अच्छी तरह सोच समझ कर रखी गई है, क्योंकि इसके स्थान पर यदि विधेयात्मक रूप रखा जाता तो उसका अभिप्राय ये होता कि जिस बात को या व्यवहार को या आचरण को आप अपने लिए अनुकूल समझते हो, उसी तरह का व्यवहार दूसरों के साथ आपको करना चाहिए। तो पहले में न करना चाहिए और दूसरे में करना चाहिए है, परंतु यदि ठीक तरह से समझें तो करना चाहिए कि उक्ति सदाचार के लिए कसौटी नहीं बनती। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति शराबी है या कोई जुआरी है, तो उनको यही अच्छा लगेगा कि दूसरा भी शराबी और जुआरी हो। निषेधात्मक उक्ति में ये त्रुटि नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे कोई लोग धोखा न दे, तो उसे दूसरों को भी अपने व्यवहार से धोखा नहीं देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने देह प्राण को सुरक्षित रखना चाहता है, तो उसको दूसरों के देह प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, उसकी घात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी न्यायपूर्वक उपार्जित वस्तु या संपत्ति को कोई दूसरा अपहरण नहीं करे, तो उसे भी किसी दूसरे की न्यायपूर्वक उपार्जित वस्तु का अपहरण नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मन वाणी और कर्म से असंयत होकर अपनी भोग वासना की तृप्ति के लिए किसी पुरुष या स्त्री के साथ उसकी अनिच्छा होते हुए भी अपनी भोग्य वस्तु उसे बनाने का आचरण नहीं करे, तो बदले में उसे भी अपनी वासना की तुष्टि के लिए असंयत होकर छल बल या कौशल से उसे पूरा नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसकी जीवन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति जिन वस्तुओं से होती है, वह उसे ठीक तरीके से उपलब्ध

शब्द हो और वह दूसरा कोई व्यक्ति उन चीज़ों को संचित करके दूसरों के लिए दुर्लभ न करे तो उसे भी बदले में ऐसा नहीं करना चाहिए। यही पांच उदाहरण हैं जिसे हमारी संस्कृति में यम, नियम या व्रतों के नाम से अथवा शील के नाम से प्रकट किया गया है, जिन्हें हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संयम और अपरिग्रह कहते हैं।

नैतिकता विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज का विचार, वाचक स्वर था डॉक्टर छगन मोहता का। आकाशवाणी बीकानेर का ये डोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में पहले सुनिए अनुप जलुटा के स्वर में ये भक्ति गीत।

हरिओम शरण और नंदिनी शरण के स्वर में अभी आपने सुना ये भक्ति गीत। कार्यक्रम में आप सुनिए चंदन दास के स्वर में अगला भक्ति गीत।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है तुलसीकृत रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। मुख्य गायन स्वर है आशा भोंसले और जगजीत सिंह का और संगीतकार है सतीश भाटिया। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रही हैं बालकंठ के दोहा संख्या 209 के आगे से दोहा संख्या 211 तक की चौपाई का सस्वर पाठ।

श्री रामचरित मानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीकृत रामचरित मानस गान का सस्वर पाठ। मुख्य गायन स्वर था आशा भोंसले और जगजीत सिंह का और संगीतकार थे सतीश भाटिया। आज के कार्यक्रम में आपने सुना बालकांड के दोहा संख्या 209 से 211 तक की चौपाई का सस्वर पाठ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूप रेखा।

हमारी सभा में। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय रहेगा मशरूम खेती से आय बढ़ाएं। जानकारी देंगी श्रीमती मुक्ता जैन। लोक भजन सुनेगा सवेरे 6:50 पर और दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा सवेरे 7:00।

सवेरे 7:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। सौरभ, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 8:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता, खेलों के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार होंगे श्री श्याम सुंदर चुग। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा सवेरे 8:45 पर और लोक संगीत का आप आनंद ले सकते हैं सवेरे 9:10 पर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अमीर खां का ख्याल मियां की मल्हार आप सुनेंगे। समय रहेगा सवेरे 9:30। सवेरे 10 बजे सुनेगा फिल्म संगीत और दिन में 11 बजे हेलो बीकानेर फोनिंग पर आधारित कार्यक्रम। सूत्रधार होंगी श्रीमती प्रतिमा तिवारी, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का होगा।

0: उपाध्याय। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय है मशरूम की खेती से आय बढ़ाएं। जानकारी दे रही हैं श्रीमती मुक्ता जैन।
1: मशरूम री खेती रे बारे में, मशरूम री खेती पहलो सबसे मोटो उचित कदम है कि आपने जगह रो चयन करनो जटे प्राकृतिक प्रकाश एर वातावरण सुखद हुए, बीमारियां एर कीटारो बचाव कम सु कम हुए। स्थानीय किसान एर विशेषज्ञ सु आपने सलाह ले लेनी चाहिए। मशरूम री खेती रे लिए स्पष्ट स्वच्छ एर सांवले रंग रे प्लास्टिक शेड में उचित मात्रा में नमी री उपस्थिति जरूरी हुए है। मशरूम री खेती रे वास्ते आपने क्यारियां री तैयारी करनी है जिनमें छोटे छोटे चट्टान या रेतीले मिट्टी रो उपयोग करनो है। तैयार क्यारियां पर खाद री उपयोगिता व्यवस्था करनी है जिया की गोबर बेल पत्र कंपोस्ट आदि री। मशरूम ने छोटे छोटे छिड़काव ने सीधे या गोल टर्मी चट्टाना पर राखनो चाहिए जिसु वे नीचे रे वातावरण में सुरक्षित रह सके। बीजा ने स्वच्छ एर पानी सु भरोड़ी थाली में रखनो एर बी ने 24 घंटे तक बिगागे राखनो। एर बिगोड़े बीजा ने अलग सु निकाल गए एरबा ने उचित स्थान पर सुखाणु। सुखोड़ा बीजा ने क्यारिया में छिड़काव कर देणु एर सुनिश्चित कर लेणु कि वे एक दूसरे सु प्राथमिकता न लेवे। बीजा रे ऊपर छिपाकर उचित मात्रा में मल्टीमीडिया गोबर करनो जिया की छोटी चट्टाना या पानी सु भरोड़ा प्लास्टिक पाइप। बीजा रे उदमन रे बाद क्यारिया ने उम्र कैद करने रे लिए थाली सु पनीर उपयोगिता व्यवस्था करनी। मशरूम ने धीरे धीरे बढ़ने रे लिए नियमित रूप से नमी री उपयोगिता हुए है जिया की सीरे रे पानी ने स्प्रे करनो। अच्छी गुणवत्ता वाला मशरूमा रे लिए नियमित रूप से खाद री उपयोगिता करनी जिया की सीरा खाद एर निर्मित कंपोस्ट। मशरूम री खेती रे वास्ते वातावरण नियंत्रण लिए उचित तापमान आवृत्ति एर वातावरण री निगरानी राखनी। रोजाना क्यारिया ने स्वच्छ एर बाकी मशरूम सु छुटकार पाने वास्ते धोनो। उचित समय पे मशरूम री कटाई करनी जब इंगी ऊंचाई 4 से 6 सेंटीमीटर हो जावे। एर क्यारिया री सभी रेखावा ने एक साथ काटा एर नए फसल रे क्यारिया ने पुनः तैयार करनो। मशरूम री कटाई रे बाद भी ने उचित स्थान पर सुखाणो एर पैक करनो। आपरी खेती रो प्रबंधन करने रेवा छे अच्छी तकनीका रो उपयोग करनो चाहिए जिया की फिल्ट्रेशन प्रणाली एर सिंगल सेट प्रणाली। मशरूम री खेती में अच्छा रोग निरोधका रो प्रयोग करनो जिया की फोजेक टॉपसिन एर कैप्टन। मशरूम री खेती में संचार रेवा से उचित तरीके रो उपयोग करनो जिया की वायल नॉट या वायरलेस संचार सिस्टम। मशरूम री खेती में उचित प्रबंधन रेवा से समय समय माथे प्रशिक्षण

0: सेमीरारा में भाग लेणु। मशरूम री खेती में प्रदर्शन रहवासे उचित पदार्थों उपयोग करनो, जिया कि बियर, ब्राउन रोट, ग्लिसरीन। मशरूम री खेती सुप्राप्त उत्पादका ने स्थानीय बाजार में रेस्टोरेंट वगैरह में सप्लाई करनो। मशरूम री खेती सु वित्तीय संसाधन की आवश्यकता सु बचो जा सके है, जिया कि जल संसाधन और भूमि। मशरूम री खेती एक सांप्रदायिक कार्य सामुदायिक कार्य हुए है, जिसु सामुदायिक विकास ने बढ़ावो भी मिले है। मशरूम री खेती सु अपने परिवार ने एक अतिरिक्त आय को स्रोत भी अपने मिले है, और आपानी जिसु आपानी आर्थिक स्थिति में सुधार आवे, और मशरूम री खेती रे द्वारा आपानो औद्योगिक करियर भी आपा बना सका हाँ, जिसु आपने आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य री आवश्यकता री पूर्ति करने में एक साधन रे रूप में मशरूम री खेती मिले है। मशरूम री खेती सु आपा पर्यावरण रे प्रति सतर्कता बढ़ा सका हाँ, क्योंकि यह स्थानीय और स्वदेशी उत्पादका ने भी प्रोत्साहित करे है, और जल संसाधन भी बचत करे है। मशरूम री खेती रे वास्ते कई फायदा हुए है, जिया कि मशरूम री खेती सु उच्च मूल्य वाला मशरूम रो उत्पादन हुए है, जिसु किसान री आय अधिक हुए है। कम समय में पूरो विकास मशरूम री खेती सु आपा लेर पूरो विकास कर सका हाँ, जिसु फसल रो तेजी सु निर्धारण हुए है, और आर्थिक विकास में मशरूम री खेती किसान ने आर्थिक विकास रो अवसर भी मिले है। उच्च पोषक तत्व मशरूम में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और ओमिनो एसिड हुए है, जिका स्वास्थ्य में आहार पूर्ति में महत्वपूर्ण हिस्सों हुए है। प्राकृतिक वनस्पतिक संसाधन रो संरक्षण भी मशरूम री खेती सु हुए है, पर्यावरण सुरक्षा में मदद करे है, और मशरूम री खेती कम पानी री आवश्यकता हुए है, जल संरक्षण रा अच्छो उदाहरण में प्रदर्शित करा हा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय था मशरूम की खेती से आय बढ़ाएं। जानकारी दे रही थी श्रीमती मुक्ता जैन। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब सुनिए लोक भजन। कलाकार है वीरेंद्र शर्मा।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं, पेश है सुप्रभात।

कार्यक्रम सुप्रभात के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ रेखा भाटी। श्रोताओं, एक नई सुबह नई उम्मीदों और नए एहसासों के साथ आपका स्वागत कर रही है और अगले कुछ पलों तक संगीत, जानकारी और दिल से दिल तक पहुंचने वाली बातों का खूबसूरत सफर आपके साथ तय करेंगे। तो चलिए, फिलहाल हम आशाओं के सावन में गोते लगाते हैं और उम्मीदों की और उमंगों की बहारों का एहसास करते हैं।

श्रोताओं, हर दिन किसी न किसी दिन विशेष की या विषय की बात हम आपसे करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के दिन विशेष के लिए हम बात कर रहे हैं सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन सामाजिक, आर्थिक विकास और शांति में सहकारी समितियों के योगदान को मान्यता देने के लिए समर्पित है, जो लोकतांत्रिक नियंत्रण और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित होती है। यह दिवस पहली बार वर्ष 1923 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA द्वारा मनाया गया था और 1995 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। अगर इस दिन विशेष की थीम यानी कि विषय पर बात करें तो प्रतिवर्ष एक विशिष्ट विषय तय किया जाता है और हाल के वर्षों के लिए इसे एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए सहकारिता घोषित किया गया। यह विषय सामाजिक न्याय, समावेश और एकजुटता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगर दिन विशेष के महत्व की बात करें तो यह दुनिया भर में प्रदर्शित करता है कि कैसे सहकारी उद्यम गरीबी कम करने और आजीविका का समर्थन करने और समुदायों को एक साथ लाने में मदद करते हैं। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकार से समृद्धि की भावना प्रमुख है। विशेषकर कृषि, डेयरी जैसे दूध क्रांति और बैंकिंग क्षेत्रों में सहकारिता का

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते और बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा जयंती विषय पर। श्रोताओं, गुलजारी लाल नंदा की जयंती प्रतिवर्ष 4 जुलाई को मनाई जाती है। वे एक महान भारतीय राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने दो बार वर्ष 1964 और वर्ष 1966 में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। वे एक जाने माने श्रम मामलों के विशेषज्ञ थे और उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्य किया और भारत में श्रम अधिकारों के लिए आवाज उठाई और साथ ही साथ वे योजना मंत्री और गृह मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। श्रोताओं, राष्ट्र निर्माण और श्रमिकों के उत्थान में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

श्रोताओं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत देशभक्तों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी कड़ी में एक नाम है महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू का। जी हाँ श्रोताओं, ये वो नाम है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह वर्ष 1922 का नेतृत्व कर आदिवासियों के अधिकारों के लिए गुरिला युद्ध चलाने के लिए मन्यम विरुडु यानी कि जंगल का नायक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई वर्ष 1897 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के पंडरंगी गांव में हुआ। उन्होंने

मद्रास फॉरेस्ट एक्ट वर्ष 1882 के दमनकारी कानूनों और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया। श्रोताओं, उनका नेतृत्व इतना अच्छा और विशाल और संगठित था कि उन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए भारी इनाम रखा और आखिर में अंतिम समय तक वे अंग्रेजों के खिलाफ अपनी पूर्ण देशभक्ति के साथ लड़ते रहे और उनकी संगठित सेना और संगठित उनका जो संगठन था उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस तरह उन्होंने बहादुरी और बलिदान के साथ स्वयं को देश पर न्योछावर कर दिया। उनकी इस बलिदान पर भारत सरकार ने उन पर डाक टिकट भी जारी किया। श्रोताओं, अल्लूरी सीताराम राजू का संपूर्ण जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम रहा और आखिर में उन्होंने स्वयं को देश के लिए शहीद कर दिया। श्रोताओं, ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को आज हम उनकी जयंती पर याद करते हुए नमन करते हैं कि ऐसे ही वीर देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर और उनके बलिदान के फलस्वरूप ही आज हम आज़ादी की इस खुली हवा में स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक बनकर अपने खुशहाल जीवन को जी रहे हैं। नमन है ऐसे देशभक्तों को, नमन है इस भारतीय वसुधा को जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया और जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया।

श्रोताओं, फिलहाल घड़ी हमें इशारा कर रही है कि सुप्रभात के इस अंक को यही देना होगा विराम। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का, आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी बीकानेर का ये डोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सवेरे के 7:30 हुए हैं। समय है फिल्म संगीत का, तो चलिए हमारे साथ फिल्मी गीतों के इस खूबसूरत सफ़र पर। और इस सफ़र में सबसे पहला गीत आपकी नज़र। रवि के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म है उम्मीद।

श्रोताओं, इश्क वो एहसास है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना शायद कभी मुमकिन नहीं, या कभी किसी की मुस्कान में बस जाता है तो कभी किसी की आंखों में, तो कभी किसी गीत की धुन बनकर दिल की गहराइयों तक उतर जाता है।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा था हर्षद जयपुरी ने, गीत को गाया था मोहम्मद रफी ने और फिल्म थी जानवर। फिल्म संगीत का ये कार्य

0: कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। फिल्म संगीत का ये सफर अभी जारी है, बस लौटते हैं इस छोटे से संदेश के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कहते हैं मोहब्बत जब सच्ची हो तो हर मौसम खूबसूरत लगने लगता है, हर रास्ता आसान और हर धड़कन किसी अपने का नाम लेने लगती है। शायद इसीलिए ये बहुत हसीन बनती है और किसी की मुस्कुराहट उसे फूलों सी खूबसूरत हंसी और मौसम सी खूबसूरत रवानगी देता है।

फिल्म आरजू के लिए ये स्वर था मोहम्मद रफ़ी का। शब्द रचना थी हर्षा जयपुरी की और संगीत था शंकर जयकिशन का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में अभी आपने सुना फिल्म घर का ये गीत। गीत को लिखा था गुलजार ने और संगीत था आरडी बर्मन का। श्रोताओं, कभी किसी का साथ एक खूबसूरत ख्वाब लगता है तो कभी किसी की याद। ख्वाब खुली आंखों से जब हम देखते हैं तो रिश्तों के मायने देते हैं और जिंदगी को उम्मीद और दिल को मुस्कुराने की वजह देते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म पत्थर के सनम से। साथी कलाकार मुकेश, गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए फिल्म कारवां फिल्म के गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। उम्मीद है आज के गीतों ने आपके दिल को

0: सुकून दिया होगा, आपकी यादों को फिर से महकाया होगा और आपके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान जरूर आई होगी। तो हमें इस फिल्मी गीतों के इस खूबसूरत सफ़र को यहीं देना होगा विराम, क्योंकि घड़ी हमें इशारा कर रही है कि अब समय है समाचार का। तो आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात सुनेंगे और उसके बाद होगी मॉर्निंग न्यूज़।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ

0: अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्योर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को

0: पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: 95 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। सौरभ कार्यक्रम में लीजिए सुनिए वार्ता, खेलों के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार है श्री श्याम सुंदर चूरा।
1: जहां तक खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, तो सबसे पहले स्कूलों के स्तर पर उनकी भागीदारी पर विचार करना जरूरी है। जिस प्रकार पौधशाला में बीज डालकर पौधे तैयार किए जाते हैं, तब वे बड़े होकर हमें फल व छाया देते हैं, उसका लाभ सीधे रूप में सभी प्राणी को मिलता है। उसी प्रकार बालिकाओं में भी प्राथमिक स्तर से पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के प्रति रुचि पैदा की जाए, तो हमारे देश में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं होगी। यही वजह होगी जो हमें आने वाले समय में बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। आज हम खेलों में महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, तो देखने में आता है कि सभी खेलों में इनकी भागीदारी कम सी रहती है, जो महिलाओं के लिए तो चिंता का विषय है ही, साथ में हम पुरुषों के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब महिलाएं खेलों के प्रति रुचि नहीं लेगी तो वे अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग नहीं रह पाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि उसका वयस्क जीवन भी अच्छा नहीं होगा। जब एक माँ स्वस्थ नहीं होगी तब वह अपने बच्चों को भी स्वस्थ वातावरण प्रदान नहीं कर पाएगी, परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी अस्वस्थ व कमज़ोर होगी। देश के विकास में भी महिलाओं की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज प्रतिस्पर्धा का युग है, इसमें महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने में अपना योगदान दे रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की। शिक्षा, सांस्कृतिक, विज्ञान, खेलकूद या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, प्रत्येक में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सरकार भी अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों व खेलकूद के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयासरत है। जब कोई महिला खिलाड़ी या महिला टीम राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेलकर देश के लिए पदक प्राप्त करती है, तब बहुत खुशी होती है और इससे देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। वे धन्यवाद की पात्र है, तब सामाजिक और पारिवारिक विरोध के बाद भी यह उपलब्धि हासिल करती है। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को उनके अनुकूल वातावरण व सुविधा नहीं मिलने के कारण उन्हें खेल से पीछे भी हटना पड़ता है। उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। महिला खिलाड़ियों को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने व उनकी रुचि पैदा करने में शारीरिक शिक्षक, माता पिता, परिवारजन, सरकार, विद्यालय तथा खेल संघों का महत्वपूर्ण रोल होता है। इन सब की महिलाओं के प्रति भी संकुचित नहीं होनी चाहिए, उनमें खेलों के प्रति जागृति पैदा करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों जैसे सानिया मिर्जा, ताशी नुक्शी मलिक, कृष्णा पूनिया, शगुन चौधरी, अपूर्वी चंदेला, श्वेता राठौड़, साइना नेहवाल, पीवी संधू, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, अदिति चौहान जैसे खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहिए कि जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है। अब मैं आपको उन खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कड़ी मेहनत करके देश के लिए खेलकर पदक जीते व राष्ट्र का नाम रोशन किया। सानिया मिर्जा दुनिया की तेज तरार खिलाड़ियों में से एक मानी जाने वाली इस खिलाड़ी ने कई खिताब जीतकर देश का नाम बढ़ाया है। अब इसने दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगेज के साथ मिलकर सत्र 2015 में WTA फाइनल्स में अपना रुतबा बरकरार रखते हुए इस प्रतिष्ठित खिताब पर कब्जा बनाए रखते हुए नवा खिताब जीता। इससे पहले इसी जोड़ी ने 2014 में भी यह खिताब जीता था। इस सत्र में इस जोड़ी ने WTA इंडियन वेल्स, मियामी, चार्ल्सटन विम्बलडन, अमरीकी ओपन, स्वांगजू ओपन, वुहान ओपन व चाइना ओपन खिताब सहित कुल 9 युगल खिताब अपने नाम कर लिए हैं। सानिया मिर्जा का इस वर्ष का ओवरऑल यह 10वां खिताब था। सानिया मिर्जा ने जनवरी 2015 में अमेरिका की बोथानी मॉन्टेक सैंडर्स के साथ सिडनी इंटरनेशनल का खिताब भी जीता था। सानिया व हिंगेश ने 29 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता। यह उनका 30वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। सानिया व हिंगेश की जोड़ी ने जनवरी 2016 को सिडनी इंटरनेशनल टेनिस का 29वीं महिला युगल खिताब जीतने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। अदिति चौहान, फुटबॉल के क्षेत्र में हम

0: हमारे देश के कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम फहराया है, लेकिन दिल्ली की अदिति चौहान ने कमाल करते हुए एशियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर बनकर देश के लिए फुटबॉल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा दिया। अदिति ने लंदन में 30वें एशियाई फुटबॉल अवार्ड में पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। लंदन में 20 नवंबर 2015 को संपन्न हुई एशियाई अवार्ड समारोह में अदिति चौहान को फुटबॉल में महिलाओं की उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। अदिति वेस्ट हैम के इंग्लिश प्रीमियर क्लब में यूनाइटेड लेडीज टीम के लिए खेलती है। इतना ही नहीं, वह भारत की पहली महिला फुटबॉलर है जिनके साथ इंग्लैंड के इस शीर्ष क्लब ने करार किया है। हमें इस खिलाड़ी पर नाज है। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली त्रिपुरा की 23 वर्षीय दीपा ने रियो ओलंपिक में 4वां स्थान प्राप्त करके देश की पहचान स्थापित की है। ओलंपिक में पहली बार तो ना ही बड़ी बात होती है, लेकिन पहली बार में ही ऐसे बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो अपना नाम व मुकाम हासिल कर लेते हैं। यही किया दीपा ने, जिसने रियो में अपने प्रदर्शन से पूरे देश की लाडली बन गई। ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट होने का गौरव भी दीपा ने ही हासिल करके देश के 125 करोड़ देशवासियों का दिल भी जीत लिया। देश का मान बढ़ाने के फलस्वरूप ही भारत के राष्ट्रपति ने भारत के सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया। इसी सम्मान की कड़ी में नवंबर 2016 को अर्जुन अवार्ड से भी दीपा को सम्मानित किया गया। इसके अलावा दीपा कर्माकर को अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स फेडरेशन द्वारा 6 जुलाई 2016 को वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट के रूप में नामित किया गया। वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाली देश की पहली जिम्नास्टिक है। हाल ही में दीपा को प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया में 30 वर्ष से कम उम्र के सुपर अचीवर्स की सूची में भी शामिल किया है, जो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पीवी सिंधु भारतीय इतिहास में वर्ष 2012 में साइना नेहवाल ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिलाने के बाद पीवी सिंधु ऐसी पहली महिला शटलर है जिसने ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाया। इससे पहले सिंधु ने वर्ष 2013, 14 और 15 में मकाऊ ओपन बैडमिंटन का खिताब लगातार 30 वर्ष जीतकर भी रिकॉर्ड अपने नाम लिखा दिया। सिंधु ने जनवरी 2016 को मलेशियाई मास्टर्स ग्रैंड मिक्स गोल्ड बैडमिंटन का खिताब भी दूसरी बार जीता। मरुस्थल नगरी बीकानेर की महिला खिलाड़ियों ने भी इस धरा का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। इतिहास की बात करें तो समस्त महिला खिलाड़ियों के बारे में जानकारी देना बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में रेलवे की भारतीय खिलाड़ी रेखा आचार्य ने तथा पन्ना चौधरी ने साइकिलिंग में बीकानेर का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। इसी प्रकार कबड्डी खेल में कई महिला खिलाड़ियों ने अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बीकानेर का नाम उज्ज्वल किया, जिनमें मुख्यतः मैना चौधरी, सुनीता जाखड़, रुक्मणी राबिया, सुनीता जाट शामिल है। इसी कड़ी में तीरंदाजी में भी शिवानी शर्मा, वीणा व्यास, दीपिका शर्मा तथा विशाखा चूरा ने कई पदक दिलाकर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करवा दिया। विश्व का सबसे तेज तर्रार खेल खो खो में भी बीकानेर की खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया, जिनमें सुनैना खंडा, गुंजन भार्गव, पुष्पा कंवर, सलमा तंवर, शिल्पी भार्गव, दुर्गेश नंदन गुप्ता आदि ऐसी खिलाड़ी रही है जिनका योगदान खो खो खेल जगत में कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा बैडमिंटन में भी राधिका सिंह भाटी ने राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाया है। यदि हम बीकानेर धारा की बात करें तो हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी बेटियां हमारे जिले का खेलकूद के क्षेत्र में कई दशक से लगातार नाम रोशन करती आ रही है। हम इन पर जितना गर्व करें उतना ही कम है। अंत में मैं यही कहना ठीक रहेगा कि उन खेलकूद के क्षेत्र में महिलाओं का घटता रुझान न केवल हमारे लिए बल्कि संपूर्ण देश के लिए चिंतनीय है। इसके लिए हम सबको अर्थात अभिभावकों, खेल संघों, विद्यालयों, खेल प्रशिक्षकों तथा सरकार को मिलकर प्रयास करने होंगे, तभी हमारी महिलाएं खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में रोशन कर पाएगी।
1: सौरभ में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, खेलों के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका। वार्ता करते श्री श्याम सुंदर चूरा।

पेड़ पौधे हमारी हरी भरी प्रकृति का श्रृंगार है। संकल्प लें और कोशिश करें कि एक पेड़ जरूर लगाएं और अपने शहर और अपने देश को खूबसूरत, सुंदर और हरा भरा बनाएं। जल जीवन है, जल की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जल की एक एक बूंद को बचाइए, अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए। बरसात के इस मौसम में बरसती इस बूंदों को सहेजिए, इस बरसती हुई बूंदों को संभालिए। ये कल आपके मजबूत भविष्य का आधार होंगी।

जान है तो जहान है, सड़क पर जब चलें तो यातायात नियमों की पालना करें, धीरे चलें, सुरक्षित चलें, वाहन का उपयोग करते समय अपने फोन का इस्तेमाल ना करें।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय है सुगम संगीत का। आइए सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाते हैं अनूप जलूटा के गाए कुछ भक्ति गीत।

स्वाभाविक है। कोई शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब लोग खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने कितनी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा के गाए कुछ भक्ति गीत। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 9 बजने को है, कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर, देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में दो दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के प्रभावों की समीक्षा की, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश

0: ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में दो दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलनीनो के प्रभावों की समीक्षा की, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और राज्य को विभिन्न सौगात देंगे। वे जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जाएंगे, जहां वे लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तरा के पचपदरा में देश के पहले ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पचपदरा में एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जिससे देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के आधारशिला रखे जाने और जोधपुर एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि नए टर्मिनल को लेकर वहां लोगों में बहुत उत्साह है। इसके बनने से अधिक पर्यटक जोधपुर आएंगे, जिससे स्थानीय व्यवस्था मजबूत होगी।
2: जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर हवाई संपर्क से देश विदेश के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे मेहरानगढ़, उम्मेद भवन, ओसिया और थार जैसे क्षेत्र पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी। होटल, हस्तशिल्प, परिवहन, रेस्तरा और स्थानीय व्यापार को भी सीधा लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आधुनिक एयरपोर्ट निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति देगा, जिससे जोधपुर क्षेत्रीय विकास का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल पचपदरा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रिफाइनरी का इंतजार लंबे समय से था, जो अब पूरा होने जा रहा है।
3: काफी समय से इंतजार था रिफाइनरी का, भी उद्घाटन होने वाला है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने 17 जनवरी 2018 में इसका शिलान्यास किया और उद्घाटन भी उसका वही कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ का इंजन है।
0: मुख्यमंत्री ने कल पचपदरा स्थित मंडापुरा में HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का भी उद्घाटन किया।

0: सिरोही के माउंट आबू में आज से सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जा रहा है। दो दिन का ये शिविर विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है। शिविर में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिरोही संवाददाता।
1: कार्यक्रम में देश भर से विधि एवं न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ तथा नीति निर्माण से जुड़े अधिकारी भाग लेंगे। चिंतन शिविर में न्याय प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी आधारित न्याय प्रणाली, नागरिकों को सरल एवं सुलभ कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाने, संस्थागत सुधार तथा सुशासन को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप भावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून आगे बढ़ रहा है और उसने ज्यादातर हिस्सों पर अपनी पहुंच बना ली है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून की उत्तरी रेखा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू जिलों से होकर गुजर रही है। अगले दो तीन दिन में इसके शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने आज जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी को छोड़कर पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट बताया है। इसके अलावा कुछ दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इनमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर शामिल हैं। यहां भारी बारिश की चेतावनी है। इस बीच जयपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं। सुबह कुछ स्थानों पर छिटपुट बरसात भी हुई। करौली में हल्की फुहारों ने जिले का मौसम खुशनुमा बना दिया है। भरतपुर और बांसवाड़ा में कल देर रात से शुरू हुआ बरसात का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। जालौर में कल रात हवा के साथ हल्की बरसात हुई। सिरोही के पिंडवाड़ा, आबू रोड, स्वरूपगंज सहित विभिन्न क्षेत्रों में कल देर शाम घंटे भर तक झमाझम बादल बरसे। हमारे डूंगरपुर संवाददाता ने बताया कि वहां दो दिन से चल रही बारिश से लगभग सभी इलाके तरबतर हैं।
2: राजस्थान में मानसून के प्रवेश के बाद दक्षिणी राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। दो दिनों से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। वहीं बारिश की वजह से खेत भी पानी से लबालब हो गए हैं। वहीं नदी नालों में भी पानी की आवक बढ़ने लगी है। बारिश के साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और किसान अब खेती बाड़ी में जुट गए हैं। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति और उसके संभावित प्रभावों पर समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने संबंधित मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को उपयुक्त फसल बुवाई की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जलाशयों और भूजल स्तर की निगरानी, पशु चारे की उपलब्धता तथा कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन कल जयपुर में किया गया। कार्यक्रम में देश के 25 राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। युवाओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका निभाते हुए संसद की कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत की आधारशिला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर। देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में दो दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के प्रभावों की समीक्षा की। कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सवेरे के 9:10 हुए हैं। समय है लोक संगीत का।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किशन कुमार किराड़ू के गाए कुछ राजस्थानी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 9:30 हुए हैं, समय है शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद आमिर खां का गाया ख्याल, मियाँ की मल्हार।

Bye-bye.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद आमिर खां का गायन ख्याल मियां की मल्हार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

विजन वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। समय मिलाना चाहे तो स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला गीत जिसे गाया है अंकित तिवारी और श्रुति पाठक ने, फिल्म का नाम है बागी 2। गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत गौरव रोशन का।

अंकित तिवारी और श्रुति पाठक ने, फिल्म का नाम है बागी टू। गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत गौरव रोशन का।

0: कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Sena.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल के स्वर में गीत को लिखा है रश्मि विराग ने, माफ कीजिएगा, गीत को लिखा है जावेद मोहसिन ने और गीत को लिखा है रश्मि विराग ने, गीत को गाया है श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल ने और फिल्म का नाम है धड़क 2।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं।
1: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
2: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
1: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: है
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

कार्यक्रम में आप सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म जैकपॉट का ये गीत। गीत को लिखा है तुराज और अजीम सिराजी ने, संगीत शारिब और तोशी का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

मोहित चौहान के गाए फिल्म बोल बच्चन के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 11 बजे हैं। अब पेश है प्रोग्राम हेलो बीकानेर, फोन इन पर आधारित कार्यक्रम। सूत्रधारा श्रीमती प्रतिमा तिवारी, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का है।

हेलो बीकानेर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है श्रोताओं। आज के इस कार्यक्रम में बातचीत करते हैं आपसे कुछ अपने बारे में, यानी कि मनुष्य के बारे में, इंसान के बारे में। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कई बार ऊंचाई से निचाई की ओर भी आना होता है, और सफल वही है जो गिर करके उठता है। यानी कि मूल्यांकन कभी इस बात से नहीं होना चाहिए कि हमने जीवन में कितनी ऊंचाई प्राप्त की, अपितु इस बात से होना चाहिए कि जीवन के कर्तव्य पथ पर कितनी बार हम गिरे भी और दोबारा संभल के खड़े हुए। जाहिर सी बात है कि सफलता असफलता दोनों का स्वाद हम चखते हैं अपने जीवन में, और खास बात भी है कि सफल और असफल लोगों के बीच में बल और बुद्धि का अंतर नहीं होता, बल्कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का अंतर होता है। यही मूल अंतर हमें खास और आम बनाता है। अगर हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो हम गिर करके पुनः उठकर अपने काम में लग जाते हैं, और वहीं अगर हम थोड़ा सा भी मनोबल को कमजोर कर लेते हैं तो वहीं हमें उठने में मुश्किल होती है और हमें अपने लक्ष्यों को पाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब भी हमको ऐसा लगे कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, हमें तुरंत ईश्वर का ध्यान

0: में बल और बुद्धि का अंतर नहीं होता, बल्कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का अंतर होता है। यही मूल अंतर हमें खास और आम बनाता है। अगर हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो हम गिर करके पुनः उठकर अपने काम में लग जाते हैं, और वहीं अगर हम थोड़ा सा भी मनोबल को कमजोर कर लेते हैं तो वहीं हमें उठने में मुश्किल होती है और हमें अपने लक्ष्यों को पाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब भी हमको ऐसा लगे कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, हमें तुरंत ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना चाहिए, मनोबल को बढ़ाना चाहिए और तुरंत उठ करके उस स्थान से अपने काम में लग जाना चाहिए। यही हमारी सफलता की कुंजी है और यही श्रेष्ठ माध्यम भी है। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, देखते हैं हमारे साथ कौन साथी जुड़ते हैं और सुनते हैं कौन कौन से गीत। तो आइए देखते हैं हमारे साथी कौन है। हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं वृंदावन कॉलोनी से राजेंद्र बिडवालकर।
0: जी राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: जी राजेंद्र जी, आज तो आपका पहला ही कॉल लग गया है और बड़ी खुशी की बात है। आप हमारे कार्यक्रम से हमेशा जुड़े रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। जी बताइए राजेंद्र जी, आज का क्या संदेश आप देना चाहते हैं?
1: संदेश तो है, अब बारिश के दिन शुरू हो रहे हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: अपने बीकानेर के सड़कों पर तो जगह जगह खड्डे हैं, तो पानी इकट्ठा होता है और पानी इकट्ठा होता है तो क्या है कि मच्छर बहुत होते हैं। ये खतरनाक, सबसे खतरनाक डेंगू के मच्छर हैं। इससे मतलब अपने को घरों में भी बच के रहना है और बाहर भी बचाव करना है। अपने आसपास की सफाई रखनी है, मच्छरों को डेवलप होने ही नहीं देना है अपने को।
0: हाँ, सबसे बेहतर उपाय आपने बता दिया कि मच्छरों को डेवलप होने ही नहीं देना है कहीं पर भी। अगर हाँ, छतों पर या कहीं पर भी हमें ऐसा लगता है कि पानी एकत्रित है,
1: तो बहुत जानलेवा बीमारी हो जाती है कई बार।
0: बिल्कुल, और अपन देखते भी हैं हर साल ही एक ऐसा दौर आता है जिसमें हॉस्पिटल जो है वो भर जाते हैं मलेरिया के क्या, डेंगू के क्या, चिकनगुनिया के क्या, मतलब इतने तरीके के बुखार हो गए हैं आजकल की समझ में नहीं आता कब कौन सा कहाँ प्रभाव डाल देगा और इंसान बिल्कुल जीवन खतरे में पड़ जाता है।
1: बहुत खतरनाक है ये वास्तव में, जितना बचे ना उतना ही अच्छा है अपने को।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बचना जितना है उतना ही अच्छा है, क्योंकि देखिए जो सड़कों पर खड्डे हैं या जिनके अंदर पानी भरा हुआ है, जिनके अंदर मच्छर पनप रहे हैं, जो सार्वजनिक स्थल पर हैं, उनका तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने आसपास के माहौल को साफ रख के
1: आसपास को तो अपन देख सकते हैं, अपने घर के आसपास भी जो कूलर वगैरह है और कोई खड्डे हैं तो वहाँ पे भी अपने को
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ध्यान रखना ही चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है आपका राजेंद्र जी, और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी तक पहुँचेगा ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। और आप बता दें कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आम्रपाली पिक्चर का है
0: जी,
1: जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, 1966 की पिक्चर है ये।
0: इतना पुरानी फिल्म का गीत आप सun रहे हैं और अच्छा,
1: तो पुराने गानों का शौकीन हूँ।
0: नहीं बिल्कुल, देखिए गाने पुराने हो चाहे नए हो उनमें जो है मधुरता,
1: बड़े कुछ बहुत अच्छे होते हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा होता है।
0: जी जी, और संगीत वही है जो मन में प्रसन्नता ला दे, जिसको सुनते ही मन प्रसन्न हो जाए, है ना?
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसा ही गाना आपने चयन किया है जिसको सुनते ही मन प्रसन्न हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं आप और हम सभी मिल करके ये सुंदर सा गीत।
1: सुरेश जी गहलोत
0: जी आपके मित्र हैं?
1: जी मेरे प्रिय मित्र,
0: प्रिय मित्र हैं आपके। चलिए कोशिश करिए कभी सुरेश जी से भी बात करवाएं आप हमारी।
1: जरूर जरूर
0: जी, धन्यवाद राजेंद्र जी,
1: धन्यवाद आपको।

0: श्रोताओं आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़े हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: सुभाष खत्री एडवोकेट, कमला कॉलोनी, बीकानेर।
0: जी सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताएं।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान जाता है यहाँ से तो धर्म साथ में जाता है, धर्म करना चाहिए। धर्म के चार सूत्र है, सत्य बोलना, दान देना, दया करना और तप करना। तो सत्य एक ऐसी, जैसे राजा दशरथ ने सत्य बोला था, कभी कोई ये झूठ नहीं बोला, सत्य छोड़ा नहीं कईयों ने। दूसरा है दान। अब कलयुग में एक ये दान रह गया है जो थोड़ा बहुत लोग करते हैं, चाहे दान कैसा भी करो कल्याण करता है। जितना भी आप दान
0: जी,
1: करोगे
0: जी,
1: तो आपको फल मिलना है, दूसरों को तो
0: मिलना
1: नहीं
0: है, बिल्कुल।
1: तीसरा है दया। कोई हॉस्पिटल पड़ा है, कोई बीमार है, गरीब है, तो इसकी सहायता करो। भगवान यही कहते हैं कि आपको भेजा इसलिए अच्छे काम करने के,
0: जी,
1: दयावान बनो। दया उसको कुछ नहीं, उसका ध्यान करना, उसको कपड़े दो, मिठाई दो, पटाखे। आप करोड़ों पटाखों में खर्च कर देते हैं। और अंतिम में तप। तप का मतलब है इंद्रियों को अपने गलत रास्ते से हटाना। हटाओगे अच्छा काम होगा, बुरा काम होगा नहीं, पाप नहीं होगा। ये चार सूत्र जिसने धारण कर लिए ना,
0: जी,
1: वो धर्मात्मा है, नारायण है,
0: नारायण है। ये बात सही है। चलिए आप बताते हैं सुभाष जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गीत तो मैंने कहा आपको, मेरा जन्मदिन है 6 जुलाई को।
0: जी
1: उस्तादों के उस्ताद पुरानी फिल्म है,
0: जी
1: अशोक कुमार, प्रदीप कुमार की बेहतरीन फिल्म थी।
0: जी जी
1: उस फिल्म का गाना सुना दीजिए, रफी की आवाज में है। 100 बार जन्म लेंगे, हम
0: जी
1: तो नहीं लेंगे, अब पता नहीं अगली ज्योति कैसी होगी।
0: जी सुभाष जी, आपके
1: अभी
0: जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये मधुर सा गीत।
1: धन्यवाद।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। श्रोताओं ये देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो आकाशवाणी ढोला मारू चैनल फोन इन कार्यक्रम।
0: हाँ जी कौन बोल रहे
1: हैं? राजस्थान जिला बीकानेर गंगा शहर से।
0: मंसूर जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: जी स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आकाशवाणी ढोला मारू चैनल पूरी टीम स्वस्थ होगी और मस्त होगी।
0: जी हाँ बिल्कुल बताएं आज का संदेश बताएं मंसूर जी।
1: ये ना कहते ना कि मतलब दिल का आई ना घर का आंगन और मोहल्ले की गलियां साफ सुथरी उनसे एक देखने वाला देखे थे।
0: क्या बात है क्या बात है। अगर दिल साफ होगा तो देखिए घर में तो सफाई होनी ही होनी है, और अगर घर में सफाई होगी तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास की जो सड़कें हैं गलियां हैं वो भी साफ ही रहें।
1: कहते हैं कि सफाई करना एक सिर्फ महिला या एक मतलब व्यक्ति का काम नहीं है। जहां आप रह रहे हैं आप पूरा साफ सफाई का ख्याल रखें, चाहे वो भी तो वो मतलब नॉर्मल जगह हो, आप कहीं रह रहे हो, धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो,
0: जी
1: साफ सुथरा रखें।
0: बिल्कुल साफ सुथरा। और देखिए स्वच्छता के तो मायने ही अलग हैं। स्वच्छता हम खाने में भी कर सकते हैं, स्वच्छता हम अपने आसपास के माहौल में कर सकते हैं, अपने कपड़े जो पहनते हैं उनमें कर सकते हैं, अपनी वाणी में हम स्वच्छता के संग शुद्धता ला सकते हैं, है ना।
1: स्वच्छता कहने का मतलब स्वच्छता।
0: हाँ बस बस बिल्कुल
1: प्यार की खुशबू आती रहती है।
0: बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात। ये जो प्यार की खुशबू है ये अपने आसपास महकती रहती है तो हमसे लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता चला जाता है। जी बहुत अच्छा संदेश मंसूर जी आपका। और अब बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गीत तो सुनना है साहब की आवाज में मखमली आवाज में है।
0: तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। बहुत अच्छा गीत है मंसूर जी और आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहा है तो आइए सुनते हैं। जी हाँ लीजिए मित्रों के नाम।
1: फरियाद अली कालूभाई राजू भाई गोपाल भाई पुरुषोत्तम कार्यक्रम गंगा शहर से।
0: जी सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में और सभी जनों की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।
1: जी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप हमारे नंबर नोट कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0151-2528-041 और 0151-2528-042। ये दोनों ही नंबर हैं श्रोताओं हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से और करिए हमसे बातचीत और सुनिए अपनी पसंद का गीत और दीजिए कोई ऐसा महत्वपूर्ण संदेश जो हम सभी के लिए बहुत लाभदायक हो। आइए देखते हैं अगले साथी हमारे कौन जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मूलचंद सोनी, बीकानेर, बंगला नगर।
0: जी, बंगला नगर से मूलचंद जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका भी।
0: जी तो सोनी जी हैं आप, तो इसका मतलब सोने का काम करते हैं।
1: अरे मैडम अभी तो सोना इतना महंगा हो रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है कोई।
0: सही कह रहे हैं, अभी तो सब नकली से ही काम चला रहे हैं।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है, ये
0: बिल्कुल सही
1: काम है, धंधा बिल्कुल ही बंद पड़ा अभी तो।
0: ऊंचाइयां तो दोनों ही धातु जो है सोना और चांदी दोनों ही ऊंचाइयां छू रही हैं। और देखिए ऊंचाइयां भी इतनी हैं कि जब तक किसी के लिए बहुत ही जरूरी नहीं है तब तक कोई कुछ भी नहीं खरीद रहा है।
1: सही बात है
0: ना सर? तो ऐसे
1: में बात ये क्या करेगा, कमाएगा या खाएगा या बनाएगा कुछ?
0: बिल्कुल सही सर,
1: सही बात है, ये बिल्कुल सही है।
0: लेकिन अब तो छोटी से छोटी चीज भी सर 10-20 हज़ार से कम की नहीं है।
1: नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सर ये तो वाकई में सही बात है कि जब इतने हाई रेट हो गए हैं तो धंधे पे तो असर पड़ना ही पड़ना है।
1: सही है
0: जी जी जी। तो मूलचंद जी फिर कैसे, क्या काम कर रहे हैं, कुछ नया आपने शुरू करा है या इसी में ही आप कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की?
1: इसी में है, कभी कोई आ जाता है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं बैठे हैं, और क्या करें, ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं
0: जी।
1: जैसे बरसात को डिग रहे हैं ना अभी, बरसात अच्छा। आएगी आज तो कल, कल नहीं तो परसों।
0: हाँ, और बरसात भी देखिए लेट होती जा रही है।
1: लेट होती जा रही है, सही बात है।
0: मतलब ईश्वर जो है वो हर तरफ से हमारी परीक्षा ले रहे हैं।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
0: चलिए कोई बात नहीं, आपकी जो हेलो बीकानेर में जुड़ने की परीक्षा है वो खत्म हुई और आपका फोन हमारे से मिल गया और है ना, और आपके जो गीत सुनने की जो फरमाइश है वो भी अब पूरी होने वाली है। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ओ मेरे जीवन साथी, मेरे साथ निभाना।
0: जी
1: एक मैडम थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं
0: जी बताएं।
1: देखो अभी स्कूलें चालू हो गई है ना।
0: हाँ जी।
1: तो ये इतने पशु हो गए बच्चे जा ही नहीं सकते हैं इतने। आप रेडियो के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पशु की और की जैसे जनगणना होती है वैसे पशुओं की भी होनी चाहिए घर घर में।
0: जी जी।
1: जो पशु थोड़ा कम हो, दूध निकलता है जब तक तो रखते हैं घर में, दूध बंद हो जाता है उसको छोड़ देते हैं
0: घर के बाहर छोड़ देते हैं और वो फिर वो पूरा दिन जो है वो बाहर ही घूमते रहते हैं और शाम के समय फिर अंदर लेते हैं उनको।
1: फिर वो कचरा वचरा ऐसे गंदा मंदा खाते हैं पीते हैं, ऐसे बहुत बुरा लेते हैं इनके पशुओं की। तो
0: बहुत अच्छी बात कही मूलचंद जी आपने। और देखिए जानवरों से जो है वो छोटे बच्चे जो स्कूल खुल गए हैं उनको जाने आने में परेशानी तो होती ही है देखिए। और कई बार
1: जैसे पशु खड़े हैं ना तो एकदम से वो सिर मार देते हैं।
0: हाँ जी,
1: मोटरसाइकिल पे
0: जी। और देखिए हम पढ़ते भी हैं अखबारों में, कई बार हमने पढ़ा भी है, न्यूज आती है कि भाई दो लड़ाई करते हुए जो पशु हैं वो आदमी से भिड़ गए और आदमी की मृत्यु तक हो गई। हाँ, तो ये तो वाकई में बहुत बहुत ही मतलब वैसे विचारणीय मुद्दा है कि वाकई में जो ये पशु आवारा घूमते रहते हैं या जिनके हैं उन वो भी अगर घर से बाहर निकाल देते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ सख्त कदम होना चाहिए।
1: जैसे अभी हेलमेट नहीं लगाते हैं, चालान काटते हैं ना
0: जी
1: पशु बाहर है, उनको चालान काटना

0: जी जी जी बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपका है मूलचंद जी, और रेडियो के माध्यम से आम जन तक पहुंचेगा, और हम समझते हैं कि ये संदेश आपका सभी तक पहुंचे, ताकि सुनने वाले जो हैं अगर उनमें कहीं थोड़ी बहुत भी सोच बदलती है तो हमारे कार्यक्रम के लिए सफलता मिलेगी। जब बताएं मूलचंद जी आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: वही वो मेरे जीवन साथी, मेरे
0: साथ में रहना। जी बिल्कुल मूलचंद जी, आपने हमें फोन किया इसके लिए बहुत शुक्रिया, और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: ठीक है, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: गांव खोकरा वाली से विनोद बारस में आवेदन कर रहा हूँ।
0: जी विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत ही आपका भी वेलकम करते हैं, और
0: जी
1: हर बुधवार को हम फोन करते हैं और शनिवार को प्रोग्राम सुनते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है प्रोग्राम।
0: जी
1: आपकी प्रस्तुति इतनी शानदार होती है कि दिल को भा जाती है।
0: जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखिए विनोद जी, आपको इंतजार रहता है इस कार्यक्रम का, तो हमें भी बड़ा इंतजार रहता है कि हम इस कार्यक्रम को करें, और जो भी श्रोता हमसे जुड़ते हैं उन सभी का हम धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण
1: हाँ
0: भूमिका
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, आपकी भी बहुत मेहनत होती है,
0: जी
1: आपका भी श्रेय बहुत होता है। हर प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगता है
0: जी
1: श्रोताओं को सुनने में।
0: जी सही कह रहे हैं आप।
1: ज्ञानवर्धक प्रोग्राम होते हैं।
0: संदेश ऐसे आते हैं जो आप और हमसे जुड़े हुए ही होते हैं। जी
1: हाँ
0: विनोद जी, बरसात वगैरह हुई आपके यहाँ पे?
1: अब कुछ सप्ताह हो गए हैं बरसात हुई नहीं, अब धूल भरी आंधी चल रही है।
0: गर्मी।
1: वैसे तो पहले तो पखवाड़े में तो बहुत बारिश हुई थी,
0: जी।
1: खूब बारिश हुई और दिगांत वगैरह भी खूब होगी।
0: लेकिन अब जो है वो
1: अभी
0: हफ्ते भर से जबरदस्त गर्मी पड़ रही है।
1: हाँ हाँ जी हाँ जी, या तो 1 जुलाई 2 3 जुलाई तक मौसम आपको सूचना दे रहा है, तो
0: जी
1: शायद
0: देखते हैं
1: बरसात
0: कि
1: होगी।
0: हाँ बिल्कुल। अब लेकिन ये 2-3 दिन तो हमें गर्मी वाले गुजारने ही पड़ेंगे। हाँ
1: बारिश
0: जी,
1: का इंतजार है हमें।
0: हाँ बारिश का इंतजार है। गाना तो आपने पिछले हफ्ते ही सुन लिया था, है
1: हाँ
0: ना?
1: जी हाँ जी हाँ
0: अब देखते हैं झूम के सावन आता कब है। आज बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: आप तो किशोरदा का गीत है, प्यार को चाहिए क्या
0: एक
1: एक
0: नजर एक
1: नजर एक
0: नजर।
1: नजर फिल्म से। परिवार के सदस्य हैं विशाल बारा साहब, विकास बारा साहब, रोशनी बारा साहब और शकुन बारा साहब।
0: जी सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में, और आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।
1: ओके
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हेलो बीकानेर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है बुधवार को दिन में 11 से 12 बजे और इसका प्रसारण होता है शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे। तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से। आइए देखते हैं अगले साथी हमारे कौन जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी।
0: गंगाधर सावनकर जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी
0: जी। बताएं कैसे हैं आप गंगाधर जी?
1: मैं तो बढ़िया हूँ दीदी, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया है। आप बताएं काम क्या करते हैं गंगाधर जी?
1: मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, रिटायर हो गए हैं आप?
1: हाँ,
0: जी
1: तो अभी रेडियो सुनता हूँ, रेडियो हर जगह फोन लगाता हूँ
0: जी,
1: और कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं
0: जी। खाली समय में कुछ और आप एक्स्ट्रा गतिविधि करते हैं, कुछ अलग काम करते हैं कुछ खाली समय में?
1: एक प्राइवेट ड्यूटी करता हूँ दीदी।
0: अच्छा।
1: हाँ, 25 दिनों समझो ड्यूटी की जा रहा हूँ मैं।
0: ड्यूटी के दौरान भी आपका रेडियो ऑन रहता है?
1: हाँ रहता है वो।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, काम कोई सा भी हो गंगाधर जी हमें बिजी रहना चाहिए और कार्य करना तो देखिए आपको और हमको सभी को जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: दीदी।
0: चलिए अब बताएं
1: तो
0: गंगाधर जी कौन
1: बिल्कुल
0: सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज दुलारा फिल्म का,
0: हाँ
1: कुमार शानू अलका याग्निक का,
0: जी
1: तुम्ही से तुम्ही को चुरा लेंगे हम,
0: जी
1: ये गाना सुनना है दीदी।
0: जी जी तो आइए आपकी
1: मित्रों
0: आपकी पसंद पर सुनते हैं हम सभी।
1: का नाम लेते थे,
0: जी
1: मित्रों का नाम लेते थे।
0: हाँ जी लीजिए।
1: हमारे आलो आकाशवाणी ग्रुप के गौतम रायबड़े, तुकाराम जाधव जी, सुनील झा, दिलीप पाउजा, उदयलाल
0: हाँ
1: डेलर जी, चंद्र गंगवार और भगवान सिंह जी, जादव पैटन जी, लोकेंद्र वर्मा, सभी को सुनना दीदी गाना।
0: सभी आपके सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं और आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: जगदीश राय गर्ग जी का मानसा पंजाब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है बीकानेर के कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: बहन जी, हम आपका भी हम पंजाब में बहुत स्वागत करते हैं
0: जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। जी
1: जी।
0: जगदीश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से हमेशा से जुड़े हुए हैं या आज पहली बार जुड़ रहे हैं?
1: बहन जी, एक बार पहले जुड़ा था तो
0: हाँ
1: मेरी कॉल लगी थी, और एक बार हम आकाशवाणी केंद्र देखने भी आए थे, हम देख के भी गए थे।
0: अच्छा, बीकानेर में
1: हाँ भी
0: बहुत अच्छी बात है सर, आकाशवाणी बीकानेर से आप मतलब इतना उससे जुड़े हुए हैं कि आप यहाँ पे आकर के आकाशवाणी घूम के भी गए हैं।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, हम
0: जी
1: अंदर आए थे, घूम के गए थे। बहन
0: जी जगजीत जी, बताएं वहाँ का मौसम कैसा है पंजाब का?
1: जी, अभी तो बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बस बादलों का इंतजार है, आते हैं चले जाते हैं। तो एक गीत हमारे होंठों पे आ जाता है,
0: हाँ जी बताएं।
1: तो फिल्म लोफर का गीत है आज, हम मैं वो ही सुनना चाहूंगा
0: जी हाँ
1: रफी साहब जी की आवाज में।
0: जी
1: आज मौसम बड़ा बेईमान है,
0: हाँ,
1: और
0: क्योंकि बरस नहीं रहा है, केवल हमें धूप छांव दिखा के ही चला जा रहा है।
1: जी झुठला के चला जाता है, तो हम बस देखते रह जाते हैं
0: जी
1: बादलों की ओर।
0: जी दगजीत जी, बहुत अच्छी बात आपसे हुई हमारी, और हमें अच्छा लगा आपका फोन आया। आप हमेशा हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें।
1: धन्यवाद
0: जी
1: बहन जी, बिल्कुल जुड़े रहेंगे, ये
0: जी
1: अपना ही तो केंद्र है सारे।
0: जी बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
1: धन्यवाद बहन जी।
0: धन्यवाद।

0: श्रोता यही देखते हैं हमारे कार्यक्रम में अगले श्रोता हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं
1: मैं दशरथ स्वामी सागर से। जी,
0: जी? दशरथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी। बताएं दशरथ जी, आज क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं?
1: संदेश तो गर्मी का मौसम है, ऊपर से वो चौमासा शुरू हो रहा है, बारिश
0: जी।
1: का मौसम शुरू होने वाला है, और हो कुछ कुछ हो भी गया ऊपरी मानसून का, जिससे किसान खेतों में लग चुके हैं
0: हाँ
1: विजय विजय करने के लिए।
0: जी बिल्कुल। तो कई बार हमारी और भी श्रोताओं से बात हुई है, तो उन्होंने ये भी बातचीत की कि जो पिछले समय 8-10 दिन जो बारिश का असर रहा, लोगों ने
1: जी
0: तभी बीजान कर दिया
1: जी
0: है ना, तो अब जब ये गर्मी पड़ रही है, तो ये क्या उनके लिए लाभदायक है या कहीं नुकसान ना पहुंचे फसलों को?
1: नुकसान पहुंचने वाला अब नहीं है वो, थोड़ा अगर इसे 15-20 दिन पहले बीजान हो जाता तो हो जाता नुकसान, वरना अब नहीं है नुकसान, क्योंकि अब ये मानसून आने वाला ही है,
0: जी।
1: इतनी ये गर्मी, अब जो उमस वाली गर्मी है ये फसल को चाहिए होती है।
0: अच्छा, जो बीज हैं वो जो फूटते हैं वो इस गर्मी में अच्छा हो जाता है वो।
1: हाँ, उसकी बढ़तवार है वो, अच्छी होती है उमस वाली गर्मी में।
0: बहुत अच्छी बात है दशरथ जी। देखिए, आप ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, तो आपको इन बातों का बहुत बेहतर ज्ञान है कि कैसे फसल की बिजाई होती है और कैसे कौन सा मौसम उनके लिए अच्छा होता है, अनुकूल होता है ना?
1: बाजरे का बीजान का तो मतलब असल में यही मौसम होता है,
0: बिल्कुल।
1: जेठ की बाजरी ऐसे बोली जाती है,
0: अच्छा, जेठ का जो बाजरा है वो अच्छा होता
1: किसान।
0: है।
1: हाँ, वो बहुत अच्छा
0: हाँ
1: होता है।
0: चलिए, और ये आप ये
1: जी
0: बात जो है वो हम आप जैसे किसान वर्ग के लोगों से ही पता चल सकती है कि जेठ का बाजरा भी अच्छा होता है। देखिए,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि शहरी में तो क्या है, हम तो जाते हैं अमल तो बाजरा खरीदते ही नहीं है, और नहीं तो बाजरे का आटा जो है जैसा है वैसा ही लेकर के हम आ जाते हैं, लेकिन ग्रामीण।
1: बिल्कुल, वो
0: हाँ
1: देसी बाजरी तो मिलना भी बहुत ही असंभव है,
0: अच्छा।
1: बहुत असंभव है।
0: अच्छा,
1: देसी बाजरा तो
0: देसी
1: बीज से नहीं, क्योंकि उसकी पैदावार जो है बहुत कम होती
0: कम
1: है।
0: होती है, तो देसी और संकर बाजरे में क्या फर्क होता है?
1: उत्पादन में फर्क होता
0: अच्छा
1: है, देसी
0: अच्छा कैसे?
1: बाजरा जैसे बीजे में कम बैठता है, शंकर बाजरा उससे डबल ट्रिपल हो जाता है।
0: अच्छा, इसीलिए देसी की वैल्यू भी ज्यादा होती है जी। गुणों का भी फर्क तो है ही।
1: गुणा को बहुत फर्क है उसमें, खाने में स्वाद में फर्क है, गुणों में फर्क है।
0: अच्छा, चलिए, कुछ जानकारी हमें भी मिली और हमारे श्रोताओं तक भी आपके माध्यम से पहुंचेगी कि भाई अभिजान किस तरीके से हो सकता है, और बाजरे की जो आज अपने
1: बिल्कुल
0: खास बात करी, बहुत अच्छी बात दशरथ जी आपकी, कि क्वालिटी में भी फर्क है, रुपयों पैसों का भी फर्क है, बीजान का भी फर्क है और समय का भी फर्क है। हाँ चलिए, एक अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगी आपके माध्यम से। अब बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: शोले फिल्म का ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे।
0: दोस्ती के नाम पे मशहूर ये फिल्म और इसका ये खूबसूरत गीत, आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के लिए हम इस गाने को डेडिकेट करते हैं और
1: हाँ,
0: सुनते हैं आपकी पसंद पर
1: धन्यवाद।
0: ये गीत। धन्यवाद।

हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे आकाशवाणी बीकानेर की टीम का सहयोग रहा। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी बरका थानवी व्यास, इस कार्यक्रम का संयोजन किया अमित सिंह ने और मैं थी आपके साथ सूत्रधार प्रतिमा तिवारी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 12 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों

0: को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा

के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द-ए-खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 12:05 हुए, आइए सुनते हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी कुछ ही देर में यानी 12:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। वहीं 12:40 पर हम आपको सुनवाएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। 1:05 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

ही जिले की चिट्ठी लेकर हम हाजिर होंगे, समय रहेगा 6:40। ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, समय रहेगा शाम 7:00।

अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं पुणे इसी सभा में दोपहर 2:30 पर। साथ ही युवा साथियों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा शाम को 5:05 से।

सुगम संगीत की महफिल सजेगी 7:45 पर। वहीं बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण लेकर हम हाजिर होंगे। समय रहेगा 8 बजे और 8:30 बजे सुनिएगा लोक संगीत।

फिल्म संगीत सुनिएगा रात्रि 9:15 पर वहीं साहित्य भारती। जी हाँ, ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे 9:30 पर।

रात्रि 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कलाकार होंगे पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय, गायन खयात के साथ।

ये थी हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम और चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर की 12:10 हुए, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले पहल हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में ये खूबसूरत गजल।

इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। आइए सुनते हैं अब ये कलाम, कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति, आवाज़ ललित कुमार व्यास की।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम अरू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं बप्पी लहरी का संगीत। शब्द हैं इंदिवर के, आवाजें आशा भोंसले और मोहम्मद अजीज की। फिल्म का नाम मुद्दत।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब आनंदित होते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से शब्द एसएच बिहारी के हैं, आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के एक बजने को है, कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंच गए हैं। वे अब से कुछ देर बाद 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विदेश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं, जोधपुर रिंग रोड के एक हिस्से सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया यह नया टर्मिनल भवन हर साल 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि योजना से अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा तथा 100 नए हवाई अड्डों और 20 हेलीपोर्ट का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 4 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा और राजस्थान में विमानन क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।
2: आप अभी देख रहे हैं उदयपुर में नया टर्मिनल अभी बनने के लिए तैयार है। कोटा में एक नया टर्मिनल हम एयरपोर्ट ही बना रहे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे और काफी श्री गंगानगर है। जैसे हमने राज्य सरकार से भी काफी चर्चा की कि बहुत सारे ऐसे लोकेशन है राजस्थान

0: में जहाँ पे नए एयरपोर्ट की संभावना है, तो वो सबको भी आगे 10 साल में किस तरह से उसको भी सच करें, किस तरह से वहां पे एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ाए, उस पर भी एक कोशिश हमारी चलती रहेगी।
1: सिरोही के माउंट आबू में आज से सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जा रहा है। दो दिन का ये शिविर विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हो रहे हैं। शिविर में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप आधुनिक, प्रभावी और नागरिक केंद्रित विधिक व्यवस्था के निर्माण पर विचार विमर्श होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारी

0: सहकारिता दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। इन सभी को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ, भर्ती, हथियारों की आपूर्ति और हमलों की योजना बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्तता के कारण आतंकवादी घोषित किया गया है। यूपीए अधिनियम में संशोधन के तहत केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया है। संशोधन लागू होने के बाद से सरकार ने 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। राजस्थान पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। 16 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के पहले ही दिन प्रदेश भर में 18,477 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 7,104, तेज गति से वाहन चलाने वाले 5,000 से अधिक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं अवैध पार्किंग करने वाले और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलम हरू चैनल है। 1:05 हुए, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही हैं किरण शर्मा और माधुरी शर्मा।

0: कार्यक्रम में सभी बहनों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर है आपकी दो सखियां, मैं माधुरी शर्मा और मेरे साथ है
1: किरण शर्मा।
0: नमस्कार बहनों। बहनों कैसी हैं आप सब? लगता है इन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही है ना, और आप सब गर्मी से निजात पाने का कोई ना कोई उपाय तो कर ही रही होंगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो हम बता दें, वो ये कि आप अपने आसपास पेड़ पौधे तो बिल्कुल लगा ही रही होंगी, है ना?
1: बिल्कुल बहन, हम रोजाना बहुत सी बातें करते हैं, खान पान की, स्वास्थ्य की, सुबह की सैर की, पर हाँ इन सब के मूल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो है वन संरक्षण।
0: बिल्कुल, वन संरक्षण की बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बहनों, अगर हम इस ओर सजग होंगे तभी तो हमारी ये सारी बातें सार्थक हो पाएगी, वरना न तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और न ही हमारा खान पान। क्योंकि बहनों, हम जितनी भी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं वो सारी की सारी देन है हमारी प्रकृति की, इन वनों की और वन्य प्राणियों की।
1: बिल्कुल,
0: तो इसके लिए हमें सजग होना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल, चाहे हमारे खान पान की बात हो या खान पान की वस्तुओं की या भौतिक सुविधाओं की या हमारे सौंदर्य प्रसाधन की, यहाँ तक कि हमारे जीवित रहने की सबसे आवश्यक प्राणवायु तक हम अपने इस पर्यावरण से ही तो प्राप्त करते हैं, तो हम इसको अनदेखा कैसे कर सकते हैं?

0: सकते हैं, है ना
1: बहनों? हम भौतिक सुविधाओं की दौड़ में इतना आगे बढ़ रहे हैं कि इसकी होड़ में हम सारी के सारे पर्यावरण को भी भूलते जा रहे हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे और बहुत सारी महत्वपूर्ण तत्व जो हमारी मिट्टी है ना, उसको भी अनदेखा कर रहे हैं। बिल्कुल बहनों, अगर अभी तक आप सजग नहीं हुई हैं तो अब जाग जाइए, क्योंकि अभी भी समय है। वरना जल, वायु, अग्नि, हमारी पृथ्वी, आकाश, इसके बिना जीवन तो क्या मृत्यु भी संभव नहीं हो पाएगा। तो जागिए और सजग हो जाइए
0: बहनों। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है कि रात गवाई सोए के, हाँ। दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा कोड़ी बदलिन जाए। इसलिए इस अमूल्य जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं करना है बहनों, क्योंकि हमारी वो बहन जो अमृता बाई, जिसने पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया था,
1: हाँ,
0: बल्कि
1: बिल्कुल,
0: सभी गांव वालों को उसकी रक्षा हेतु प्रेरित भी किया। तो बहनों, हम उस राजस्थान की प्रकृति प्रेमी वीरांगना भूमि की संतान है, तो हम इस और उदासीन कैसे हो सकती है ना?
1: बिल्कुल नहीं हो सकती किरण, क्योंकि हमारी तो पीढ़ी के अंदर या हमारे जो खून है उसमें ये बलिदान का रंग डला हुआ है कि हम पेड़ों के लिए अपने सिर को भी बलिदान कर सकते हैं। सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं है किरण, राजस्थान से बाहर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तरांचल में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसी वीरांगनाएं हुई है जिन्होंने पेड़ों के लिए अपने बहुत कुछ बलिदान किया है और उसके लिए अपना जीवन तक उत्सर्ग किया है। तो
0: बिल्कुल
1: बहनों, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है पेड़ पौधे और हवा को सुरक्षित रखने की और मिट्टी को संरक्षित रखने की और मिट्टी के जो उपजाऊपन है, उसके जो गुण है, उसको बचाए रखने की, ना?
0: बिल्कुल
1: तो इसी के साथ अब हम हमारे बहनों को ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में, जहाँ पेड़ पौधों से बातें कर रही है ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।

0: बहनों, जीवन के लिए जितने आवश्यक वन हैं उतनी ही आवश्यक है खेती और पशुपालन भी। हाँ। चाहे हम कितने ही मॉडर्न बन जाएं,
1: हाँ।
0: और अनेक भौतिक सुविधाएं जुटा लें, परंतु एक किसान अगर अपना पसीना खेतों में न बहाएं, तपती धूप में कठिन परिश्रम न करें, तो हमारे घर का चूल्हा कहाँ जल पाएगा।
1: बिल्कुल सही कह रही हो किरण तुम। धरती से निपजा ये अन्न कई हाथों का स्पर्श पाता हुआ, कई पड़ावों से गुजरता हुआ, मंडी से होकर हमारी थाली तक या घर तक

0: समझता है, इससे जुड़ा होता है एक किसान का अथक परिश्रम, है ना?
1: सच में माधुरी जी, बीज के समय में एक किसान के लिए खेती करना बहुत मुश्किल हो गया था।
0: बिल्कुल हो गया
1: कारण था बढ़ती महंगाई और युवा पीढ़ी का खेती के प्रति बढ़ता हुआ रूखापन। उसके कारण कृषि कामगार की कमी हो गई थी और बिजली पानी की समस्या और लागत की समस्या, ऋण और बढ़ते ब्याज की समस्या, फसल का उचित मूल्य मिलने की न मिलने की समस्या, और सबसे बड़ी थी शिक्षा की समस्या।
0: और इसके अलावा जो हमारी जो खेती थी वो वर्षा पर निर्भर करती थी, और कभी बरसात हो जाती तो,
1: कभी नहीं होती,
0: और कभी नहीं होती तो अकाल पड़ता, तो ये समस्या भी थी, है ना? किरण, किसान को आधुनिक कृषि तकनीकों से किस संयंत्रों की जानकारी न होना ये भी कारण था, और उत्पादन में कमी का सामना उन्हें करना पड़ता था। सरकारी योजना भी उन्हें नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज का किसान कहीं भी पीछे नहीं रहा, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है सहकारी समितियों से।
1: बिल्कुल सच कहा आपने कि शिक्षित भी है किसान और समितियों से जुड़ भी गया है। सहकारी जो समितियां हैं किसानों के लिए एक सुंदर सौगात थी। हालांकि समितियां काफी पहले बन गई, लेकिन उसका फायदा किसान नहीं ले पाया, क्योंकि वो इतना शिक्षित नहीं था।
0: उनको इतनी जानकारी भी नहीं थी, है ना? सूचना का भी अभाव था।
1: आज किसान इनसे जुड़कर अपनी हर समस्या का समाधान तुरंत प्राप्त कर लेता है, जैसे बीज, खाद या ऋण, फसल का उचित मूल्य या कृषि संबंधित नई तकनीक संबंधी बहुत सी जानकारी वो यहीं से प्राप्त करता है।
0: भाई बहुत अच्छी बात बताई किरण तुमने। इन समितियों के ऑनलाइन पोर्टल बने हुए हैं, जिससे हर छोटी बड़ी जानकारी उन्हें तुरंत मिल सकती है हर किसान को, है ना? और इससे वो लाइव जुड़कर भी किसान योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी तुरंत पा सकते हैं।
1: बिल्कुल, उनको बस जुड़ना होता है गांव या अपने क्षेत्र की सहकारी समिति से अपने आवश्यक दस्तावेज के साथ। इसके अलावा हमारे जो आकाशवाणी केंद्र से भी हर रोज खेती की बातें कार्यक्रम और ग्रामीण जगत कार्यक्रम में भी खेती और पशुपालन संबंधी महत्वपूर्ण चर्चाएं होती है।
0: बिल्कुल,
1: उससे जुड़कर भी किसान भाई योजनाओं और फसलों और पशुओं संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं,
0: कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। किरण, किरण, आज है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जिसका उद्देश्य भी यही है कि किसान अधिक से अधिक सहकारी समितियों से जुड़कर अपने कृषि कार्य को उन्नत बनाएं। और बहनों, ये जो दिवस है दुनिया भर में जुलाई के पहले शनिवार को ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी स्तर पर सहकारी समितियों के योगदान और सामाजिक आर्थिक विकास और समुदाय आधारित मॉडल को बढ़ावा देता है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता दिवस है जुलाई के पहले शनिवार को ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहकारिता आंदोलन की उपलब्धियों का जश्न मनाना और सामाजिक और आर्थिक विकास में उसकी भूमिका को उजागर करना है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये दिवस वैश्वीकरण का 1923 से अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA द्वारा मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 1995 से इसे मान्यता दी है।
0: बिल्कुल किरण, इस वर्ष की थीम इस प्रकार है, 2026 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता है, जो सहकारी मॉडल के सामाजिक एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने की क्षमता पर ही केंद्रित है। भारत में जो आयोजन है, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय और नाबार्ड द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है इस दिन, जिससे में ग्रामीण स्तर पर पैक्स के आधुनिकीकरण और सहकारिता से जुड़े नवाचारों का प्रदर्शन भी होता है, है ना किरण?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और मतलब कुल मिलाकर ये जो कार्यक्रम है वो टिका है हमारे सहयोग पर, विश्वास पर। नहीं, जो सहकारी समितियां हैं वो मिलजुल कर कार्य करती हैं, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो क्यों
0: जहां
1: नहीं?
0: लोग सामाजिक और आर्थिक विभाजन को जो बातें हैं सहकारी समितियों में, कि जहाँ लोग सामाजिक और आर्थिक विभाजन को पार करते हुए भाग ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, मिलजुल कर काम कर सकते हैं, और समितियाँ जो है आजीविका से जुड़ी हैं, सम्मानजनक कल्याणकारी कार्यों से जुड़ी हैं, गरीबी उन्मूलन से जुड़ी हैं, और सामाजिक एकीकरण जैसे समुदायों और राष्ट्रों के बीच शांति निर्माण का भी समर्थन करती हैं ये समितियाँ। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये समितियाँ।
1: बिल्कुल, तो इसका मतलब है माधुरी जी, आपका कहने का तात्पर्य समझ गई है सख्या शायद, कि मिलजुल कर काम करने से उत्पादन भी दुगुना होगा और मन में शांति तो होगी, कार्य की

0: कार्य भी सफल होगा।
1: बिल्कुल।
0: और कहते हैं ना कि एक हाथ और बढ़ जाए तो मिलकर कितने हाथ हो जाए, तो क्यों नहीं सुने साथी हाथ बढ़ाना।
1: हाँ, तभी तो एकता में दम होता है, इसीलिए गीत सुनते हैं।

0: Akashvani at 90.
1: बहनों, इस बदलते डिजिटल युग में जहाँ हर कार्य के लिए फोन पर निर्भर हैं हम, और हमारे घर के हर काम होते हैं ऑनलाइन,
2: बिल्कुल
1: होते हैं, तो आवश्यक है हम महिलाएं भी डिजिटल युग में कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसके लिए जरूरी है हमारा डिजिटल रूप से साक्षर होना। नहीं,
2: बिल्कुल जरूरी है किरण, और इसी के लिए आज हम अपनी महिलाओं के बहनों के लिए लाए हैं महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता वार्ता का विषय है, और वार्ताकार है श्रीमती पूजा वर्मा। तो सुनिए ये वार्ता, और ये प्रस्तुति है श्रीमती पुनीत विश्नोई की, और संयोजन है श्री अमित सिंह का। तो सुनिए ये वार्ता।
3: अब दुनिया की हर बात डिजिटल ज्ञान से ही खुले प्रगति और विकास के द्वार। आज डिजिटल युग की इन लहरों के बीच महिलाओं को केवल दर्शक नहीं बल्कि सहभागी बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन हमारी जेब में पूरी दुनिया समेटे हुए है। बैंक, स्कूल, अस्पताल, बाजार, सरकारी कार्यालय, सब कुछ तो हमारी उंगलियों की पहुंच में है। लेकिन फिर भी प्रश्न यह उठता है कि क्या समाज का हर वर्ग इस डिजिटल क्रांति का लाभ उठा पा रहा है, विशेषकर हमारी महिलाएं, या यूं कहें हमारे परिवार का स्तंभ। जरा अपने घर की सबसे वरिष्ठ महिला के बारे में सोचिए, विचार कीजिए, क्या वे बिना किसी मदद के नेट बैंकिंग या UPI से लेन देन कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं, ऐसा करने के लिए उन्हें किसी ना किसी सदस्य की मदद अवश्य लेनी पड़ती है। डिजिटल साक्षरता का मतलब सिर्फ मोबाइल हाथ में लेकर उस पर उंगलियाँ घुमाने या संदेश भेजने से नहीं, बल्कि उसका उचित तरीके से प्रयोग करने, जानकारी लेने, स्व जागरूकता रखने, अपने पसंदीदा विषयों पर जानकारी लेने और तकनीक का सुरक्षित व समझदारीपूर्ण उपयोग करने से ही है। आज हजारों महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन व्यवसाय कर रही हैं, कोई अचार बेच रही हैं, कोई हस्तशिल्प, तो कोई बुटीक चला रही हैं। पहले उनका बाजार केवल पड़ोस तक सीमित था, आज सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने उनके लिए पूरे देश के दरवाजे खोल दिए हैं। एक स्मार्टफोन और इंटरनेट ने कई महिलाओं को उद्यमी बना दिया है।

कहा जाता है, यदि माँ शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित है। और डिजिटल रूप से साक्षर माँ अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति और शैक्षणिक संस्थानों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। महामारी का वह समय याद कीजिए जब हमने यह देखा कि जिन परिवारों में माताएं डिजिटल रूप से जागरूक थी, वहां बच्चों की पढ़ाई अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुई। आज अधिकांश सरकारी सेवाएं जैसे कि आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, बैंकिंग सेवाएं, गैस सब्सिडी, छात्रवृत्तियाँ, ये सब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। डिजिटल जानकारी के अभाव में अनेक महिलाएं इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती। डिजिटल साक्षरता उन्हें अपने अधिकारों तक पहुंचने की शक्ति देती है। आज महिलाएं मोबाइल के माध्यम से डॉक्टरी सलाह ले सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं और तो और बच्चों के टीकाकरण की जानकारी भी रख सकती हैं। कभी कभी तो यह एक क्लिक जीवन बचाने का माध्यम भी बन जाता है। एक समय था जब जानकारी ही शक्ति मानी जाती थी, आज भी यही बात उतनी ही सत्य है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि अब जानकारी पुस्तकों की अलमारियों में नहीं बल्कि हमारी हथेलियों में मौजूद मोबाइल फोन में सिमट कर रह गई है। ऐसे में जो व्यक्ति इस जानकारी तक पहुंच बना सकता है, सिर्फ वही अवसरों का लाभ उठा सकता है। डिजिटल साक्षरता महिलाओं को केवल तकनीकी रूप से सक्षम नहीं बनाती बल्कि उनमें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करती है। एक बहुत ही सुंदर कथन है, शिक्षा व्यक्ति को योग्य बनाती है और डिजिटल शिक्षा उसे युग के साथ चलना सिखाती है, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना सिखाती है। आज जब दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, तब महिलाओं का इस परिवर्तन से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है, समय की मांग है। यदि वे उससे दूर रह जाती हैं तो केवल वे ही नहीं बल्कि पूरा परिवार और समाज प्रगति की दौड़ में पीछे छूट सकता है। सोचिए, यदि किसी महिला को ऑनलाइन बैंकिंग की जानकारी हो तो उसे पैसे निकालने या जमा करने के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यदि उसे डिजिटल भुगतान करना आता हो तो वह सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से अपने आर्थिक कार्य स्वयं कर सकती है। आर्थिक स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान से जुड़ी हुई होती है। डिजिटल साक्षरता महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज अनेक स्वयं सहायता समूह सोशल मीडिया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पाद बेच रहे हैं। राजस्थान की कढ़ाई, पंजाब के फुलकारी वस्त्र, गुजरात की हस्तकला और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित अनेक उत्पाद अब केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं हैं। डिजिटल माध्यमों ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। यह वास्तव में महिलाओं के लिए अवसरों की नई दुनिया है। तकनीक तब सबसे अधिक सार्थक होती है जब वह अवसरों को सबके लिए समान बना दे। डिजिटल साक्षरता का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है शिक्षा। आज ऑनलाइन शिक्षा केवल महामारी के समय की आवश्यकता नहीं बल्कि सीखने का एक प्रभावी माध्यम बन चुकी है। अनेक महिलाएं जो कभी शिक्षा पूरी नहीं कर सकी, वे आज ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से नई नई चीज़ें सीख रही हैं। कोई कंप्यूटर सीख रही है, कोई भाषा सीख रही है, कोई उद्यमिता के गुर सीख रही हैं और कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। ज्ञान प्राप्त करने की कोई आयु नहीं होती और डिजिटल माध्यमों ने इस सत्य को और अधिक मजबूती दी है। डिजिटल साक्षरता महिलाओं को केवल जानकारी नहीं देती बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी बनाती है। आज विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स पर उपलब्ध है। यदि महिलाओं को इन डिजिटल साधनों का उपयोग करना आता है तो वे स्वयं जान सकती हैं कि उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं उपलब्ध हैं, उनके लाभ क्या हैं, उन्हें आवेदित कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार डिजिटल साक्षरता सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम बनती है। हालांकि इस यात्रा में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। आज भी अनेक महिलाएं तकनीक का उपयोग करने में संकोच महसूस करती हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। कई बार साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं

हमें डिजिटल माध्यमों से दूर करती है। इसीलिए डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल तकनीक का उपयोग करना नहीं, बल्कि सुरक्षित उपयोग करना है। महिलाओं को यह जानकारी होना आवश्यक है कि किसी भी परिस्थिति में अपना OTP साझा ना करें, बैंक से संबंधित गोपनीय जानकारी किसी अजनबी को ना दें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें, सोशल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करें। डिजिटल दुनिया में जागरूकता ही सुरक्षा की सबसे बड़ी कुंजी है। एक प्रसिद्ध कथन है, ज्ञान आपको शक्ति देता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सही ज्ञान आपको सुरक्षा भी देता है। जब कोई महिला डिजिटल रूप से सशक्त होती है, तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, अपितु वह अपने बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन देती है। वह परिवार के आर्थिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाती है। वह समाज में अपनी आवाज़ को प्रभावी ढंग से रख पाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अगली पीढ़ी को तकनीक के साथ जिम्मेदारी से जीना सिखाती है। यही कारण है कि महिलाओं की डिजिटल साक्षरता को विकास की आधारशिला कहा जाता है। यदि हमें विकसित भारत का सपना साकार करना है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और उसमें महिलाओं की सहभागिता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक बात साझा करना चाहूंगी, तकनीक और महिलाओं का रिश्ता भी बड़ा ही दिलचस्प है। कई घरों में एक दृश्य अक्सर देखने को मिलता है, माँ के फोन पर कोई मैसेज आता है तो वे तुरंत आवाज़ लगाती हैं, बेटा जरा देखना इसमें क्या लिखा है। बेटा जवाब देता है, मम्मी आपने फोन में क्या दबा दिया। और मम्मी कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो अपने आप ही हो गया। शायद आप में से बहुत से लोग इस दृश्य से रोज रूबरू होते होंगे, लेकिन जरा सोचिए, कुछ साल पहले जो महिलाएं केवल कॉल रिसीव करने तक सीमित थी, आज वही वीडियो कॉल कर रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं, बिजली के बिल जमा कर रही हैं और डिजिटल भुगतान भी कर रही हैं। यह बदलाव छोटा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि आज हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन चांद पर मानव को पहुंचाने वाले शुरुआती कंप्यूटरों से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यानी जो तकनीक कभी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक सीमित थी, वह आज हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। और एक बात तो आप भी मानेंगे कि घर में महिलाएं सीखने में किसी से कम नहीं होती। पहले वे रसोई के डिब्बों को बिना लेबल पढ़े पहचान लेती थी, और आज वे मोबाइल ऐप्स को उसी आत्मविश्वास से पहचानना सीख रही हैं। पहले बच्चे अपनी माँ से वर्णमाला सीखते थे, आज कई माताएं अपने बच्चों से ही मोबाइल की वर्णमाला सीख रही हैं। इसमें शर्म की बात नहीं, बल्कि बहुत गर्व की बात है, क्योंकि सीखना ही प्रगति का पहला नियम है। और सीखा किसी से भी जा सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, सीखने में किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। डिजिटल दुनिया हमें हर दिन कुछ नया सिखा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सीखने से डरते हैं और कुछ लोग सीखने का साहस रखते हैं। हमारी महिलाएं जब इस साहस के साथ आगे बढ़ती हैं, तो वे केवल खुद नहीं बदलती, बल्कि पूरे परिवार की दिशा बदल देती हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपकी माँ, दादी या नानी आपसे पूछे कि ये UPI कैसे चलता है या ये वीडियो कॉल कैसे होती है, तो झुंझलाइएगा मत, क्योंकि हो सकता है कि आज आप उन्हें तकनीक सिखा रहे हो, लेकिन जीवन के सबसे बड़े पाठ तो आपने उन्हीं से सीखे हैं ना। यदि आपके घर में माँ, दादी, नानी, बहन या कोई अन्य महिला अभी भी डिजिटल तकनीक का उपयोग करने में सहज नहीं है, तो उन्हें सिखाने के लिए कुछ समय अवश्य निकालिए। उन्हें ऑनलाइन भुगतान करना सिखाइए, उन्हें इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना सिखाइए, उन्हें डिजिटल सुरक्षा के नियम बताइए, क्योंकि किसी महिला को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना केवल एक व्यक्ति को प्रशिक्षित करना नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य को मजबूत बनाना है। अंत में इन पंक्तियों के साथ कुछ कहना है, जब नारी ज्ञान और तकनीक से सशक्त होती है, तो विकास की राह स्वयं प्रकाशित होती है। उसके आत्मविश्वास से परिवार संवरता है, उसके सशक्त कदमों से राष्ट्र आगे बढ़ता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान दें, जहां हर महिला डिजिटल रूप से साक्षर, आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त

0: कहते हैं कि भविष्य उन्हीं का होता है जो ज्ञान से जुड़ते हैं। जब महिलाएं ज्ञान से जुड़ती हैं, तकनीक से जुड़ती हैं, तो भविष्य केवल उनका नहीं बल्कि पूरे समाज का बदला जाता है। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी हमने जाना कि हमारा डिजिटल साक्षर होना भी जरूरी है और जब भी डिजिटल लेन देन करें तो सजगता भी जरूरी है। इस वार्ता के माध्यम से वार्ता का विषय था महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता। वार्ताकार थी श्रीमती पूजा वर्मा, प्रस्तुति श्रीमती पुनित विश्नोई की, संयोजन श्री अमित सिंह का। और हाँ, जब हम डिजिटल साक्षर हो जाएंगे तो लगेंगे हमारे उत्साह के भी पंख।

0: वैसे तो बहनों इस डिजिटल युग ने परिवारों को समेट दिया है। कभी संयुक्त परिवार में हम रहा करते थे, लेकिन अब ये जो समय है आज एकल परिवारों का हो चुका है। और संयुक्त परिवार स्वयं अपने आप में एक डिजिटल कम्युनिटी थी, मैं ये कहूँगी, क्योंकि उसमें बच्चे से लेके बड़ों का विकास सबका संभव हो सकता था। वैसे तो बहनों परिवार ही बच्चे की पहली पाठशाला होती है, जहाँ वे अच्छे और बुरे गुणों को सीखता है ना। हर बच्चा अच्छे और बुरे गुणों को अपने परिवार में ही सीखता है, हंसना बोलना सीखता है, वहीं पर उसे उसके जो बड़े भाई बहन होते हैं उनसे वो बोलना सीखता है, हंसना सीखता है, जो जो गुण होते हैं वो सब अपनाता है ना।
1: बिल्कुल सही कहा माधुरी जी आपने। आप

0: ने जैसे ही संयुक्त परिवार की बात की तो मुझे भी अपना बचपन याद आ गया, और वो मिलजुल कर रहना, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, सबके साथ कैसे हम रहते थे और कैसे वो हमें टोकते थे, है ना। वो सारा दृश्य मेरे आंखों के सामने जीवंत हो उठा कि वो जो मतलब वो मन के जो भाव थे उस समय वो वापस जीवंत हो गए, कि कैसे हम उधम भी करते, हुड़दंग भी मचाते और सबकी डांट भी सुनते और वो हमें टोकते रोकते भी। और पता है माधुरी जी कि है ना, जब भी कोई एक छोटा सा निर्णय हमें लेना होता तो सिर्फ मम्मी या पापा से हम नहीं पूछते थे बल्कि सबसे, मतलब बारी बारी से सबको पूछना पड़ता था। सबसे पहले दादाजी, फिर दादी जी, चाचा चाची, ताई ताऊ, है ना। एक बार छोटा सा वाक्य बताती हूँ। एक बार की बात है कि मेरी बुआ जी जोधपुर में रहा करती थी, तो उन्होंने छुट्टियों में मुझे कहा कि किरण तू भी मेरे साथ चल। तो मैंने ना अपनी मम्मी से, दादी से और दादाजी से पूछ लिया। सबसे बुजुर्ग थे घर में, बड़े थे, उनका ही चलता था सब कुछ। तो मैंने उनसे पूछ लिया, उनको मना लिया कि मैं जा रही हूँ। मैंने अपने कपड़े तैयार कर लिए और सुबह हमारी गाड़ी थी, तो जाने से पहले जैसे ही चाचा जी को पता चला कि ये जा रही है तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया तो बताओ कि मतलब दादाजी ने हाँ भर दी, चाचा जी से परमिशन नहीं ली तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। और पता है ये बात मैं उनको कह भी नहीं पाई। हुआ कि दादाजी ने पूछा, अरे तू गई नहीं? तो मैं डर डर के मारे मैंने कहा नहीं कि कहीं चाचा जी को डांट नहीं पड़ जाए बस यही कि नहीं, मम्मी ने कहा,
1: समझने की जो परंपरा है वो परिवार में ही
0: बिल्कुल
1: सीखी
0: बिल्कुल
1: जाती
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: कि मम्मी ने ये कहा कि अभी मत जा, ठीक रहेगा, मैं अकेली हूँ, थोड़ा काम भी ज्यादा है, ऐसा करके बात को टालना पड़ा। तो ये जो भाव है ना, प्रेम के, सहयोग के, या किसी के आदर के, सम्मान के, ये हम सीखते हैं अपने बड़ों से और संयुक्त परिवार से, नहीं?
1: बहुत ज्यादा सीखते हैं संयुक्त परिवार में। और वैसे देखो किरण, भाषा का भी अनुसरण हम तेजी से करते हैं। जो भाषा बड़े बोलते हैं ना उसी भाषा का
0: अनुसरण
1: अनुसरण
0: करते हैं
1: करते हैं,
0: बिल्कुल
1: और वैसे ही शब्दों का अनुसरण करते हैं, उसी तरह का व्यवहार का अनुसरण करते हैं।
0: बिल्कुल
1: अरे संयुक्त परिवार में जैसे चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई सब मिलकर रहते हैं, उन सबके साथ मिलकर रहने की जो भावना है वो हम में परिवार इसी संयुक्त परिवार
0: संयुक्त
1: में ही
0: परिवार में
1: आती है।
0: ही आती
1: और दूसरी बात है कि सबके साथ सहयोग का भाव आता है,
0: बिल्कुल,
1: एक दूसरे के सुख में सुखी होने की भावना आती
0: और
1: है,
0: दुख
1: एक दूसरे के
0: में
1: दुख में दुखी
0: दुखी,
1: होने की
0: बिल्कुल।
1: भावना का भी जन्म संयुक्त परिवार में ही होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एकल परिवार हमें नहीं सिखा सकता, संयुक्त
0: संयुक्त
1: परिवार
0: परिवार में
1: अनजाने में सिखा देता है ना।
0: बिल्कुल
1: तो किसी भी परेशानी में यदि कोई बच्चा या बड़ा पड़ जाए तो उसकी
0: झट से उसको
1: समाधान के लिए दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा
0: तैयार
1: चाची
0: रहते हैं,
1: तुरंत
0: बिल्कुल।
1: तैयार रहते हैं, ये गलत है ये सही है उनको बता देते हैं। और गलत रास्ते पर जा रहे हो तो उसे टोका टक जाता है, तो उसे
0: बिल्कुल
1: टोका टोकी भी उस समय क्या है, बच्चों को अखरती नहीं थी।
0: बिल्कुल,
1: आज हम अपने बच्चों को डांट कर देखें तो लगता है कि उन्हें वो अखर
0: अच्छा
1: गई बात,
0: ये कह
1: क्यों?
0: दिया तुम्हें,
1: हाँ ये
0: ऐसा
1: कह
0: कह
1: दिया। हाँ तो
0: दिया
1: ये चीजें उस समय संयुक्त परिवार में नहीं होता,
0: नहीं होती
1: किसी ने
0: थी,
1: मना कर दिया तो आपके भले के लिए किया है ये कहकर बच्चों को समझा दिया
0: समझाए
1: जाता था।
0: माँ, माँ ऐसा कहकर समझाती इसका,
1: समझाती थी तो
0: बिल्कुल।
1: इससे बच्चे में एक तो सहन शक्ति आती थी और दूसरा बच्चे अनुसरण करना सीखते थे। गलत किसी ने कहा है, किसी ने टोका है तो हमें ये काम नहीं करना
0: नहीं
1: है,
0: करना है
1: ऐसा
0: बिल्कुल,
1: समझते थे। तो इस तरह के उदाहरण पेश किए जाते थे चाचा चाची के द्वारा या दादा दादी के द्वारा कि भाई ऐसा काम करने से ये हो जाएगा। तो इस तरह के उदाहरण से समझाया जाता था। गुस्सा, डांट, फटकार, प्यार, सब तरीके का व्यवहार करा जाता था जिससे एक बच्चे के व्यक्तित्व को तराशा जाता था।
0: बिल्कुल।
1: और
0: जैसे उदाहरण
1: इससे
0: की आपने बात की ना, तो मेरे दादाजी हमेशा हमें कहते हैं कि आप बहुत, मतलब जैसे कोई बड़ा कर दो ऐसा काम, जैसे घी का टिन है वो आपने गिरा दिया और आप आके हमें बता दो कि हमने ऐसा किया तो आपको डांट नहीं पड़ेगी। और वही अगर घर में 5 पैसे भी पड़े हुए, उस समय वक्त चलते थे
1: हाँ
0: पांच
1: चलते थे।
0: पैसे तो वो अगर आपको पड़े हैं और आपने बिना पूछे ले लिया तो ये आपका बहुत बड़ा, आपको इसमें दंड मिलने वाला है। तो ये
1: बिल्कुल,
0: बातें छोटी
1: आपने
0: छोटी बात,
1: चोरी की
0: बिल्कुल
1: जो प्रयास किया है
0: वो
1: तो ये
0: गलत है,
1: जो गुण है वो हमें बचपन में ही परिवार में ही सिखा दिए
0: सिखाए
1: जाते
0: जाते
1: थे
0: थे,
1: कि यदि आपको कहीं कोई रुपया सिक्का मिल जाए तो उसे तुरंत मंदिर में चढ़ा दो
0: या
1: या किसी
0: फिर
1: को दान में दे दो, है ना। तो ये जो एक दृष्टिकोण होता था वो हमें परिवार ही सिखाता था, परिवार के साथ जहाँ हर दृष्टिकोण पर से हर बच्चे को परखा जाता था,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो ये गुण जो है वो परिवार में ही आते थे। तो तो इसीलिए ऐसे बच्चों का सामाजिकीकरण बहुत तेजी से होता था, है ना, और वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते थे, सक्षम रहते थे। परिवार में परख, हिदायतें, लाड, प्यार, डांट, फटकार, इन सब व्यवहारों के बीच बच्चा बड़ा होता था।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि अच्छे और बुरे जो गुण होते हैं उनमें जो अंतर होता

0: था वो हमें हमेशा सिखाया जाता था, और
1: हाँ
0: वो ही गुण हमारे चरित्र का निर्माण करते थे,
1: बिल्कुल
0: नहीं? और नेतृत्व का विकास भी, नेतृत्व के गुणों का विकास भी करते थे,
1: बिल्कुल, इस संयुक्त परिवार में तो नेतृत्व के गुणों का विकास बहुत
0: बल्कि
1: तेजी से होता है।
0: बिल्कुल यहाँ तक कि सार्वभौमिक जो गुण होते थे उनका विकास भी
1: और
0: होता था।
1: दूसरों का ख्याल रखने का गुण बच्चों में
0: बिल्कुल
1: अपना विकसित हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सार्वभौमिक गुणों का विकास मतलब कोई एकाध अपवाद भी होगा किरण, कि जहाँ बच्चों में कभी कोई किसी दूसरे को देख के हीन भावना उत्पन्न हुई हो
0: ईर्ष्या
1: या
0: देश
1: ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हुआ, वो कोई एकाध अपवाद ही है,
0: बिल्कुल
1: बल्कि संयुक्त परिवारों में बच्चा ज्यादा सीखता है और ज्यादातर गुणों का ही विकास होता है।
0: बिल्कुल आप
1: सामूहिक भावना तेजी से विकसित होती है संयुक्त परिवार में, और सबसे बड़ी बात किरण, संयुक्त परिवार में बच्चा सेवाभावी बनता है
0: बिल्कुल
1: और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से दूर होकर सार्वभौमिक दृष्टिकोण को अपनाता है
0: सही बात है। जो आजकल ये समस्या चल रही है
1: ना?
0: डिप्रेशन वाली, वो
1: हाँ
0: कभी हमने नहीं देखा
1: नहीं
0: कि
1: नहीं
0: कोई भी
1: बिल्कुल
0: बच्चा, कोई किशोर, कोई युवा डिप्रेशन का शिकार हुआ हो,
1: नहीं,
0: क्योंकि उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता था,
1: वक्त भी नहीं
0: नहीं?
1: होता था, परिवार उसकी सबसे बड़ी ढाल होती थी।
0: बिल्कुल
1: और सही अर्थों में हम बताएं कि संयुक्त परिवार ऐसा स्थान था जहां आदर्श नागरिक निर्माण हो सकता था, और यदि परिवार का बड़ा जो है वो सख्त मूल्यों पर निर्भर होता था और मूल्यों को और नियमों पर चलने वाला जो परिवार होता था उसका कारण ये होता था, उसका मुखिया सक्षम होता था और वो सबसे ज्यादा निर्णायक होता था।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ हमारे जो घर के बुजुर्ग होते थे वो हमें सेना का सम्मान करना भी सिखाते थे,
1: बिल्कुल
0: और धारावाहिक जो आते थे सेना पर पहले हमारे
1: हाँ
0: बचपन में,
1: हाँ
0: वो हमें स्पेशली बैठकर दिखाए जाते थे।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उससे क्या है, हमें देश प्रेम की भावना का विकास होता,
1: बिल्कुल
0: त्याग की भावना का विकास होता।
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: तो क्यों नहीं, अब अभी भी समय है कि हम अपने बच्चों को ऐसे भाव सिखाएं, उनके साथ बैठकर ऐसे कार्यक्रम सुने, और क्यों नहीं अभी ये गीत सुन लिया जाए कैलाश खेर जी का।
1: बिल्कुल
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है, तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक-एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है। आप सब जानते हैं कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। बीजेपी राष्ट्र प्रथम

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने

0: राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज CG सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और

0: वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में

0: दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए। आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं पंकज उदास और साथियों की आवाज़ नाम फिल्म के लिए।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। इसके साथ ही हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम को 5 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर शाम के 5 बजने वाले हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। आइए इस सभा में सबसे पहले खबरों से रूबरू होते हैं। सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिचायक है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक ऐसा औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई जमीन पर बनाया जाता है। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन में केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ई जागृति को परिष्कृत किया गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 2:30 पर पराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल सांध्यकालीन सभा के प्रसारणों के लिए। संध्या के 5:05 हो रहे हैं। उमंगों का आकाश और हौसलों की उड़ान, महत्वपूर्ण और ज्वलंत बातों के साथ संगीत की बहार, मजबूत सच्ची दोस्ती का अनोखा उपहार, भविष्य की संभावना और सूचनाओं का अंबार लेकर आए हैं युवा जोश की जीवंत कहानी, युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। आज की कहानी लेकर के आए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं पूर्विका पारिक और सौम्या पांडे। आइए विचारों के जीवंत प्रवाह से जुड़ते हैं। आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का और खुद को पहले से बेहतर बनाने का। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त सौम्या पांडे।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूर्विका पारिक और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं।
0: पूर्विका, आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुके हैं। पढ़ाई हो, ऑनलाइन क्लास हो, ऑफिस का काम, मनोरंजन, सोशल मीडिया या दोस्तों से बातचीत, हर काम के लिए हम स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार स्क्रीन देखने का असर हमारी आँखों और स्वास्थ्य पर कितना पड़ता है?
1: बिल्कुल सौम्या, तकनीक ने हमारा जीवन आसान बनाया है लेकिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कई समस्याएं भी पैदा कर रहा है। आज छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक लगभग हर व्यक्ति कई घंटे स्क्रीन के सामने बिताता है और यही कारण है कि आंखों से जुड़ी समस्याएं पहले की तुलना में अधिक देखने को मिल रही है।
0: बिल्कुल, विशेषज्ञों के अनुसार लगातार स्क्रीन देखने से डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जैसी समस्याएँ भी हो सकती है। इसके लक्षण हैं आँखों में जलन होना, सूखापन, धुंधला दिखाई देना, सिर दर्द होना, आँखों में भारीपन होना, गर्दन और कंधों में दर्द होना और जल्दी थकान महसूस करना।
1: और इसके पीछे दोस्तों एक कारण यह भी है कि जब हम मोबाइल या कंप्यूटर देखते हैं तो सामान्य की तुलना में कम पलकें झपकाते हैं और इससे आँखों की नमी कम हो जाती है और आँखें हमारी सूखने लगती हैं।
0: दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट और, लेकिन देखते देखते 1 या 2 घंटे निकल जाते हैं। खासकर सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करना या देर रात तक वीडियो देखना हमारी नींद और आँखों दोनों पर ही असर डालता है।
1: तो सवाल ये बनता है कि क्या स्क्रीन का उपयोग बंद कर देना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज़रूरत है हमें संतुलित उपयोग करने की। कुछ आसान आदतें अपनाकर दोस्तों हम अपनी आँखों की अच्छी तरह से सुरक्षा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, पूर्वी का सबसे पहले बात करते हैं 20-20-20 नियम की। इसका मतलब है हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड के लिए लगभग 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें। इससे आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है।
1: इसके अलावा हम स्क्रीन की ब्राइटनेस और फॉन्ट साइज, इन दोनों को अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। यानी कि बहुत तेज़ रोशनी हो या बहुत ज़्यादा कम रोशनी हो, इन दोनों में ही हमें मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। और दोस्तों, यदि आप रात को फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं।
0: दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और दूसरी स्क्रीन से दूरी बना लेनी चाहिए। इससे अच्छी नींद भी आती है और आंखों को भी आराम मिलता है।
1: तो दोस्तों, अगर आपकी पढ़ाई है या आप नौकरी के कारण से लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करना पड़ रहा है तो बीच बीच में आप थोड़ा उठें, थोड़ा टहलें, पानी पिएं और आंखों को भी आराम दें। इससे आपका शरीर और आपकी आंखें दोनों ही स्वस्थ रहेंगी।
0: और इसके अलावा माता पिताओं के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है कि वे बच्चों का स्क्रीन टाइम संतुलित रखें। बच्चों को मोबाइल देने की बजाय उन्हें खेल कूद, किताबें पढ़ना, ड्राइंग एंड पेंटिंग कराना, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक गतिविधि के लिए प्रेरित करना।
1: और यदि लगातार आपकी आंखों में दर्द है, धुंधलापन है या बार बार

0: सिर दर्द हो रहा है या देखने में परेशानी हो रही है, तो आप स्वयं अपना इलाज ना करें, एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उनसे सलाह अवश्य लें।
1: दोस्तों, आज के समय में स्मार्टफोन में डिजिटल वेलबींग या स्क्रीन टाइम जैसे फीचर्स भी उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि दिन भर में कितने घंटे हमने स्क्रीन का उपयोग किया है, और यदि चाहें तो ऐसे ऐप्स के लिए समय सीमा भी तय कर सकते हैं।
0: तो याद रखिए श्रोताओं, तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन तकनीक पर नियंत्रण करना वो हमें ही करना है और हमें ही सीखना है और अपने छोटे बच्चों को भी सिखाना है। तो यदि हम समय पर सही प्रबंधन करेंगे तो पढ़ाई, स्वास्थ्य और मनोरंजन तीनों में संतुलन बना पाएंगे।
1: तो आइए दोस्तों, आज हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें कि मैं स्क्रीन का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करूंगी, बीच बीच में आंखों को आराम दूंगी और अपनी आंखों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान भी रखूंगी।
0: तो याद रखिए दोस्तों, मोबाइल स्मार्ट है लेकिन हम उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं। स्क्रीन का उपयोग समझदारी से करना है, क्योंकि स्वस्थ आंखें ही उज्जवल भविष्य की पहचान है।
1: बस इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस मधुर से गीत के साथ।

0: तो दोस्तों अब समय हो गया है हमारे कार्यक्रम के सबसे रोचक और ज्ञानवर्धक हिस्से का, यानी आज के क्विज का, जिसमें हम आपसे रोज की तरह दो सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको कार्यक्रम के अंत तक सोच कर रखने हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के कौन से शहर ने 90वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेज़बानी की थी। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, भारत के कौन से शहर ने 90वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेज़बानी की थी।
1: और दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है, प्रोजेक्ट हिमांक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में संचालित होता है? मैं एक बार फिर से प्रश्न दोहराना चाहूंगी, प्रोजेक्ट हिमांक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में संचालित होता है? तो दोस्तों, ये थे आज के दो सवाल। अब आप इनके जवाब सोच के रखिए और हम आपको इनके जवाब बताएंगे कार्यक्रम के अंत में।
2: बना

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब सुन रहा

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एकता में शक्ति है और सहयोग में सफलता। जब हम मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। दोस्तों,
4: बिल्कुल, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमें मिलजुल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस।
3: तो पूर्विका, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है।
4: तो दोस्तों, हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहकारिता यानी कि मिलकर काम करने की भावना को बढ़ावा देना है और लोगों को यह बताना भी है कि सहयोग के माध्यम से समाज और देश का विकास कैसे संभव है।
3: सहकारिता का अर्थ केवल आर्थिक सहयोग नहीं है दोस्तों, बल्कि एक दूसरे की मदद करना, जिम्मेदारियों को साझा करना और सामूहिक प्रयासों से सफलता प्राप्त करना।

0: यह भावना हमारे परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज हर जगह दिखाई देती है।
1: जी हाँ दोस्तों, भारत में सहकारी समितियाँ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराना हो, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हो, या डेयरी उद्योग हो या बैंकिंग सेवाएं, सहकारिता ने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर ही बनाया है।
0: आज के युवा भी सहकारिता की भावना को अपनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जैसे यदि कुछ युवा मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करें, कोई सामाजिक अभियान चलाएं, पर्यावरण संरक्षण का कार्य करें या किसी गांव में शिक्षा अभियान चलाएं, तो उनके सामूहिक प्रयासों का प्रभाव कई अधिक होगा।
1: सही कहा सौम्या, सहकारिता हमें टीम वर्क, नेतृत्व, जिम्मेदारी और विश्वास जैसे गुण भी सिखाती है। यही गुण भविष्य में एक सफल नागरिक और अच्छा नेता बनने में मदद करते हैं।
0: आज सहकार से समृद्धि का विचार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार भी सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कई पहल कर रही है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे उद्यमों को नई ताकत मिल सके।
1: युवाओं के लिए समझना जरूरी है कि सफलता केवल अकेले आगे बढ़ने में नहीं है, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलने में भी है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो नए विचार जन्म लेते हैं और बेहतर परिणाम हमारे सामने आते हैं।
0: बिल्कुल, तो आइए कुछ आसान तरीके भी जानते हैं जिनसे हम अपने जीवन में सहकारिता की भावना विकसित कर सकते हैं। जैसे टीम में काम करना सीखें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, अपने मित्रों और परिवारों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान खोजें, और स्थानीय सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के कार्यों को भी समझें।
1: तो याद रखिए दोस्तों, सहयोग केवल आर्थिक नहीं होता है। समय देना, किसी से बात करना या किसी की बात को ध्यान से सुनना और सही सलाह देना और कठिन समय में ही साथ खड़े रहना भी सहकारिता का ही काम है।
0: तो आज के दिन आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सहयोग, विश्वास और साझेदारी की भावना को बढ़ावा देंगे।
1: क्योंकि सच ही कहा गया है दोस्तों, अकेले हम थोड़े आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम बहुत दूर तक जा सकते हैं।
0: याद रखिए दोस्तों, सहयोग से विश्वास बनता है, विश्वास से विकास होता है और विकास से एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है।
1: तो इसी तरह दोस्तों, हम हमारे बातों के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। उससे पहले चलिए सुनते हैं हम ये अगला प्यारा सा गीत।

मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा विषय है प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम और ग्रामीण विकास में उचित हिस्सेदारी का।
3: बिल्कुल पूर्विका, किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उसके गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़े हों। भारत की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए ग्रामीण विकास देश की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है
2: और प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम इसी सोच को आगे बढ़ाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज की सभी पात्र लोगों को तक समान रूप से पहुंच सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत सेवाओं जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है इस कार्यक्रम के थ्रू।
3: दोस्तों, ग्रामीण विकास में उचित हिस्सेदारी का अर्थ है कि गांव का हर नागरिक, चाहे वह किसान हो, महिला हो, युवा हो या विद्यार्थी, उसे विकास के समान अवसर मिले। यदि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा, तभी उनका वास्तविक उद्देश्य भी पूरा होगा।
2: दोस्तों, आज ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास, स्वच्छता और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर लगातार कार्य किया जा रहा है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
3: लेकिन इन योजनाओं की सफलता केवल सरकार के प्रयासों पर ही निर्भर नहीं करती, इसके लिए लोगों की जागरूकता और भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को किसी योजना की जानकारी ही नहीं होगी तो वह उसका लाभ कैसे उठा पाएगा।
2: बिल्कुल सही कहा सौम्या आपने। इसलिए प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वह अपने आसपास के लोगों को भी सरकारी योजनाओं की जानकारी दे, ग्राम सभाओं में भी भाग ले, स्थानीय प्रशासन से भी जानकारी प्राप्त करे और पात्र लोगों को उन योजनाओं से जुड़ने की सहयोग करे।
3: दोस्तों, महिलाओं की भागीदारी भी ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज अनेक महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत भी बना रही है। इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।
2: इसी तरह दोस्तों, युवाओं की भूमिका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यदि युवा नई तकनीकों को अपनाएगा, कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेंगे और अपने गांव में रोजगार के नए अवसर विकसित करें, तो गांव ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक शक्तिशाली बन सकती है।
3: इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब समय हो गया एक मधुर गीत का, तो इस गीत का आनंद लीजिए।
4: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय।

तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर, जो हमारी प्राकृतिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत दोनों से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे माही नदी की।
1: जी हाँ सौम्या, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ की नदियाँ केवल जल का स्रोत ही नहीं बल्कि कृषि, पर्यावरण, संस्कृति और जनजीवन की आधारशिला भी है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण नदी है माही नदी, जिसका विशेष स्थान पश्चिम भारत की प्रमुख नदियों में है।
0: माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के थार जिले में विंध्य पर्वतमाला के निकट स्थित माही कुंड से होता है। यह लगभग 583 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है और अंत में खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है।
1: दोस्तों, माही नदी की एक विशेष पहचान यह भी है कि यह कर्क रेखा को दो बार पार करती है, जो इसे भारत की कुछ विशिष्ट नदियों में शामिल कर देता है। यह भौगोलिक विशेषता विद्यार्थियों और भूगोल के अध्येताओं के लिए भी काफ़ी रोचक मानी जाती है।
0: दोस्तों, माही नदी का जल लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। राजस्थान और गुजरात के अन्य क्षेत्रों में खेती के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत यही नदी है। इसके जल से गेहूं, मक्का, कपास, दलहन

0: और कई अन्य फसलों की सिंचाई होती है, जिससे किसानों की आजीविका को मजबूती मिलती है।
1: सिंचाई के साथ साथ माही नदी जल विद्युत उत्पादन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी नदी पर निर्मित माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। दोस्तों, इस परियोजना में सिंचाई, पेयजल और बिजली तीनों क्षेत्रों में लोगों को लाभ मिलता है।
0: और इसके अतिरिक्त दोस्तों, गुजरात में स्थित कड़ाना बांध भी माही नदी पर बना एक महत्वपूर्ण बांध है। इन परियोजनाओं ने क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं।
1: श्रोताओं, नदियाँ केवल आर्थिक विकास का माध्यम ही नहीं होती, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं का भी अभिन्न हिस्सा है। सदियों से नदी किनारे अनेक गांव और नगर बसे हैं। लोगों का दैनिक जीवन, कृषि, व्यापार और सामाजिक गतिविधियाँ नदियों से गहराई से जुड़ी हो रही हैं।
0: लेकिन आज बढ़ते प्रदूषण और जल के अत्यधिक दोहन के कारण कई नदियां चुनौतियों का सामना कर रही है। दोस्तों, यदि हम समय रहते इनके संरक्षण के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराना कठिन हो सकता है।
1: इसीलिए हम सभी की ये जिम्मेदारी है दोस्तों कि नदियों को हम स्वच्छ रखें। नदी में प्लास्टिक, कूड़ा कचरा या अन्य अपशिष्ट पदार्थ ना डालें। जल को आप विवेकपूर्ण उपयोग करें और वर्षा जल संचयन जैसी अच्छी आदतों को भी अपनाएं।
0: इसके साथ ही नदी के किनारों पर वृक्षारोपण भी बहुत आवश्यक है। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, भूजल स्तर बनाए रखने में मदद करते हैं और पर्यावरण को संतुलित भी रखते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं दोस्तों।
1: तो याद रखिए, जल ही जीवन है। यदि हम आज जल के स्रोतों का संरक्षण करेंगे तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा। नदियों की रक्षा करना केवल सरकार का दायित्व नहीं है, बल्कि हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।
0: तो बस समय है बगले मधुर गीत का।

0: दोस्तों कहते हैं किसी भी संसाधन का सही उपयोग ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यही बात हमारे ईंधन पर भी लागू होती है। आज के इस प्रस्तुति में के क्रम में अब समय हो रहा है कि हमारे अंतिम विषय की ओर हम बढ़ें और वो है कि जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है यानी कि ईंधन की बचत।
1: बिल्कुल पूर्विका, हम सभी रोजाना किसी न किसी रूप में पेट्रोल डीजल या अन्य ईंधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि थोड़ी सी सावधानी न केवल हमारे खर्च को कम कर सकती है बल्कि देश और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक हो सकती है।
0: जी हाँ, ईंधन एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है और इसकी उपलब्धता सीमित है, इसलिए इसका सोच समझकर उपयोग करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। यदि आज भी हम ईंधन की बचत करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन संसाधनों को सुरक्षित रख पाएंगे।
1: ईंधन बचाने की शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से की जा सकती है। दोस्तों, यदि हमें पास की किसी जगह जाना हो तो पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना एक अच्छा विकल्प है। इससे ईंधन की बचत भी होगी और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा।
0: दोस्तों, सार्वजनिक परिवहन का भी हम उपयोग कर सकते हैं, उससे भी ईंधन संरक्षण काफ़ी ही अच्छे से होता है। बस, रेल या मेट्रो जैसी सेवाओं का अधिक उपयोग करने से सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होती है, जिससे ईंधन की बचत के साथ साथ वायु प्रदूषण भी घटता है।
1: इसके साथ ही वाहन की नियमित देखभाल भी बहुत आवश्यक है। समय पर सर्विस, सही हवा वाले टायर और संतुलित गति से वाहन चलाने से ईंधन की खपत कम होती है। इससे कई बार छोटी छोटी बातें ही बड़ा अंतर पैदा कर सकती है।
0: दोस्तों, एक अच्छी आदत यह भी हो सकती है कि यदि किसी स्थान पर कुछ समय के लिए हम वाहन को रोकना पड़े तो अनावश्यक रूप से हम उस इंजन को चालू ना रखें, हम गाड़ी को बंद करें, इससे भी हम ईंधन बचा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें नोटिस में नहीं आती है, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि प्रदूषण को भी हम कम करने के बारे में सोच सकते हैं, तो इन्हीं आदतों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
1: दोस्तों, आज पूरी दुनिया ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही है। स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जब तक हम पारंपरिक ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं तब तक उनका जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है।
0: तो दोस्तों, ईंधन की बचत केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, ये पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ हवा और सतत विकास के लिए भी जुड़ा हुआ एक विषय है। हमारे छोटे छोटे प्रयास भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: दोस्तों, यदि हम अपने परिवार और

0: बच्चों को भी ईंधन बचाने की आदत सिखाएंगे तो यह एक अच्छी पहल होगी। अच्छी आदतें धीरे धीरे पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं।
1: तो आइए हम सभी संकल्प लें कि आवश्यकता के अनुसार ही वाहन का उपयोग करें, ईंधन की अनावश्यक बर्बादी से बचेंगे और दूसरों को भी ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि ईंधन की बचत केवल हमारी नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व के लिए जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों हम सुनते हैं।

0: दोस्तों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे दो सवाल पूछे थे, तो अब तक तो आपने उनके जवाब सोच ही लिए होंगे। हमारा पहला सवाल था, भारत के कौन से शहर ने 90वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो उसका सही जवाब है कोची।
1: और दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल था, प्रोजेक्ट हिमांक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में संचालित होता है? तो इसका सही जवाब है लद्दाख। दोस्तों, अब समय है आज के रोजगार समाचार का। जो युवा केंद्र सरकार में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है।
0: यूपीएससी ने विज्ञापन संख्या 2026 के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप ए और ग्रुप बी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर, एरोनॉटिक ऑफिस, लीगल ऑफिसर, कंपनी प्रोसिक्यूटर, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 सहित कई पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 है।
1: तो इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में देखकर समय रहते आवेदन करें। तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है।
0: दोस्तों, विदा लेने से पहले देश के युवाओं से एक छोटी सी बात, आप अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं। अपने ज्ञान और ऊर्जा का उपयोग ऐसे कार्यों में कीजिए जिससे समाज को सकारात्मक दिशा मिले।
1: अपने छोटे से बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएं, उन्हें शिक्षा, अनुशासन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताइए। और याद रखिए, अच्छे संस्कार और अच्छे विचार ही एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं। इसी संदेश के साथ आज की हम विशेष प्रस्तुति के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं।
0: आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और इनमें दी गई जानकारियां आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल और आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण। सांध्यकालीन सभा के प्रसारणों में बहुत कुछ है। अब प्रसारित है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सांध्य किरणों की पहली दस्तक के साथ मर्दुरा के सांस्कृतिक धरा में आपका साथी आज की सुहानी सांध्यकालीन सभा में आप सभी आत्मीयजनों का अभिनंदन करता है। साहित्य, संगीत और सूचनाओं के इस संगम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्ञान मनोरंजन की एक विशेष श्रृंखला। आप आज सायंकालीन सभा में जितने भी कार्यक्रम सुनेंगे इससे आशा है कि आप लोग अत्यंत मनमोहक प्रस्तुतियों से अपने आप को संतुष्ट पाएंगे। संध्या 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम प्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर समय रहेगा आज बीकानेर दर्पण का। आज इसमें आप सुनेंगे हमारी बीकानेर के सांस्कृतिक और साहित्यिक हलचलों की साप्ताहिक लेखा जोखा। आज इसकी कड़ी जो प्रसारित होगी वो होगी 151वीं, यानी आपके प्यार और इसकी बीकानेर से जुड़ी हुई सांस्कृतिक परंपरा को देखते हुए आपने इसको 150 कड़ियों तक बेहद सराहा है, इसके लिए आप सभी का अभिवादन है। इसकी प्रस्तुति रहेगी श्रीमती पुनीत बिश्नोई की और इसे स्वर दे रहे होंगे श्री महेश उपाध्याय। संयोजन अमित सिंह का होगा। 6:30 पर आप जयपुर केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर होगी जिले की चिट्ठी और 6:45 पर प्रादेशिक समाचार।

इसके पश्चात 7 बजे आप सभी सुनते हैं हमारे साथ ग्रामीण अंचल के श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम गूंजे गांव गुआर। फरमाइश पत्रों और ईमेल पर आधारित लोकगीतों के इस खंड में आपके साथ आज रहेंगे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा और अश्विनी व्यास। रात्रि 7:45 पर दिन भर की थकान मिटाने के लिए आप सभी को आनंद मिलता है सुगम संगीत से। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। श्रोताओं, आज को आप बतला दें, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन समारोह किया जा रहा है। इसकी रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे हमारे जयपुर केंद्र से रात्रि 8:00। आपको पुनः एक बार बतला दें, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम के विभिन्न प्रकार के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन समारोह किया जा रहा है। इसकी रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से रात्रि 8:00।

0: शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों के लिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। इसमें आज के कलाकार होंगे पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। समय रहेगा रात्रि 10 बजे और 9:30 पर आप सुनेंगे साहित्य भारती हमारे दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, रात्रि 11 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के पश्चात आज की सभा का समापन होगा। आशा है सुरों और सूचनाओं का सफर आप।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में सीजी

0: सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोल मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक हलचलों का साप्ताहिक लेखा जोखा बीकानेर दर्पण का 151वां अंक। इसमें प्रस्तुति है श्रीमती पुनीत बिश्नोई की और इसे स्वर दे रहे हैं महेश उपाध्याय।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को महेश उपाध्याय का नमस्कार। बीकानेर दर्पण में सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इस अंक में हम आपको साहित्यिक गतिविधि और सेवा से जुड़ी कुछ गतिविधियों और कार्यक्रमों से रूबरू करवाएंगे। श्रोताओं, 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग निषेध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर RLG संस्थान की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम जन को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और कपड़े के थैले भी वितरित किए गए। आइए, आपको अधिक जानकारी के लिए हम लिए चलते हैं एक ऐसी नारी शक्ति के पास, जो कि इस संस्थान की मुखिया भी है और अपने दैनिक या मुख्य कार्य के अलावा प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे सेवा कार्य में देती है। आप हैं डॉक्टर अर्पिता गुप्ता। चलिए बात करते हैं आपसे और जानते हैं क्या किया इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग निषेध दिवस के अवसर पर।
1: हमारा ये जो संदेश है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगा, और ये कल ही नहीं, हम पिछले कई वर्षों से प्लास्टिक को लेके कार्य कर रहे हैं, पर शायद हमारा तरीका गलत था, क्योंकि शुरू में हमें लगा कि हमें कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके हमने बच्चों के कई कॉम्पिटिशन्स कराए, उनकी वर्कशॉप्स करवाई, उनको कागज के कपड़ों के बैग बनाना सिखाया, और हमें लगा इससे अवेयरनेस बढ़ेगी। फिर हमें लगा इससे नहीं आ रहा है बदलाव, तो हमने बस्तियों में जाना शुरू किया। फिर बस्तियों की हमने महिलाओं को पहले तो वर्कशॉप लगा के कागज के कपड़ों के जूट के बैग बनाने सिखाए, जिससे कि उनको एक अपना हस्तकला में वो दक्ष हो, और उनके भी घर में वो अपने कुछ मतलब इनकम करना चाहें तो कर सकती हैं घर बैठे बैठे। इसमें हमारे 2 मकसद थे कि एक तो महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध कराना, और दूसरा हमें बनाया बनाया सामान उपलब्ध होना, और फिर हम उनसे खरीदते थे वो सारे जो उनसे बनवाते थे ना, वो हम खरीद कर और आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे अलग अलग जगह पे। कल हमने आज एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग निषेध दिवस है, इसलिए हमने कल से ये संदेश, हमें लगा कि अब हमें ये समय आ गया है कि धरातल पर जाके काम करना होगा, तो अब हम एक एक कॉलोनी, एक एक मतलब एरिया चुनकर लोगों के घरों में, उनकी दुकानों पे जाके हम अवेयरनेस करना चाहते थे कि आप लोग, अब समय आ गया है कि अपने शहर को स्वस्थ बनाने का। और आप खुद जानते हैं सर कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, जिसको नष्ट होने में बहुत साल लग जाते हैं, और ये केवल इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी बहुत खतरनाक है। और ये मैंने तब देखा जब एक बार मैं बीकानेर से हाईवे पे हम लोग कहीं जा रहे थे जयपुर की तरफ, तो देखा मैंने कई किलोमीटर तक दोनों तरफ पॉलिथीन थी, बहुत सारी गाय जानवर बहुत सारे उन्होंने खा रहे थे वो, और उनके बाद उनका मतलब तबीयत भी खराब हो गई थी और वो बीमार हो रहे थे। तो अगर हमें अपने आगे वाले जो मतलब इंसानों से ज्यादा मुझे लगा जानवरों के लिए भी बहुत खतरनाक है ये चीज, तो हमने लोगों के घरों में जाना, दुकान पर जाकर कल हमने उन सबसे रिक्वेस्ट करी कि अगर हमें अपने आगे आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उसको बचाना है तो प्लास्टिक को हमें अपने जीवन से हटाना होगा। और आप तो खुद जानते हैं कि हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें तो हमेशा ही जैसे कागज के पत्तल दोनों में अपना शुरुआत हुई थी, लकड़ी की चीजों से यूज किया जाता था, ये हमारी संस्कृति ही नहीं थी प्लास्टिक की। तो अपने तो देश में ही अपनी संस्कृति इतनी समृद्ध है, और यहाँ की चीजों को ही अपन यूज करके अपने शहर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। तो ये सोच के कल से हमने इस तरह से धरातल पर जाकर लोगों को अवेयरनेस शुरू किया, और इसमें मैं मेरी टीम का भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे साथ में, मेरे साथ सब जगह गए और सबको कन्विंस किया कि भाई अपन लोग प्लास्टिक की जगह पे कपड़ों का, कागज का।

0: जूट का इस तरह की चीजों का उपयोग करें। बीकानेर की जनता इस सहयोग करे और इस मुहिम को हमारे आगे बढ़ाए। सर, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे इस कार्य को आपने अपने माध्यम से इतने लोगों तक पहुंचाया, और आशा करती हूँ कि कुछ लोग इसमें सुनकर प्रेरित हों और हमें सहयोग करें, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा।
1: श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं स्थानीय जिला उद्योग संघ बीकानेर के सभागार में। दिनांक 28 जून रविवार के दिन पारायण फाउंडेशन बीकानेर की ओर से युवा कवि आनंद मस्ताना की पहली कृति यदि संभव हो का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्यकार श्री मधु आचार्य आशावादी ने की। मुख्य वक्ता थे साहित्यकार राजेश विद्रोही। मुख्य अतिथि के रूप में साहित्यकार कवि कथाकार श्री मालचंद तिवाड़ी थे। इस साहित्यिक कार्यक्रम की विशेषता यह थी, नई पुस्तक के शीर्षक यदि संभव हो पर गीत भी बनाया गया था। पहले सुनिए वही गीत।

0: और अब पुस्तक के लेखक युवा कवि आनंद मस्ताना ने क्या कहा इस अवसर पर।
1: आखिरकार ये सब संभव हो ही गया, जिसका सपना कई रातों को मैंने देखा है, आज वो दिन है जिसका साकार होते यहाँ देख पा रहा हूँ। अपनी बात शुरू करूँ मैं चार पंक्तियों से, जिन्हें मैं हमेशा कवि सम्मेलन में बोलता आया हूँ, जो मुझे दीक्षा में मेरे गुरु ने दी है और उन्हें ही समर्पित है, वो आज उपस्थित भी है, वहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ।

सरगम पहुँचे श्री राम जी के द्वारों तक। योगेश ने वैसे बताई दी सारी बातें आपको, बहुत सारी अनगढ़ चीजों के ऊपर मैं लिखा करता था, छोटी छोटी सामान्य सामान्य चीजें जिन पर हम कई बार बात ही नहीं करते हैं। मच्छर पर लिख दिया, ठंड पर लिख दिया, गर्मी पर लिख दिया, कभी किसी पर कभी किसी पर, अनेक अनेक चीजों पर लिखते लिखते तुकबंदियां बनाते बनाते एक बहुत लंबे समय के बाद समझ में आया कि क्या लिखना है। आज भी योगेश मुझे डांटता है कि साहब ऐसे करो, इस तरह बैठो, इस तरह उठो, इस तरह चलना है, इस तरह बैठना है, ऐसे गाना है, ऐसे नहीं गाना है। हालांकि मैं उतना नहीं कर पाता हूँ जितने ये मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया करता है। कोशिश करता हूँ कि जो लिखा है वो आप तक पहुँच पाए, और अधिकतर जो बातें हैं मैं सच बता रहा हूँ यहाँ से बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना भावुक पल है ये। किस प्रकार से मैंने लिखा, क्या क्या चीजें थी। गीत सुनाना जो है वो एक शौक सा था, उसी को लेकर ये पुस्तक जो है वो आगे बढ़ती रही और अपनी बात मैं कहता रहा, और यहाँ आज भी आपके समक्ष इसी लिए मौजूद हूँ।

0: आया हूँ।
1: मुख्य वक्ता श्री राजेश विद्रोही ने अपनी बात रखते हुए कहा,
2: दूसरा अवसर है जब मैं बीकानेर के किसी नौनिहाल रचनाकार की पुस्तक के विमोचन के मौके पर हाजिर हुआ हूँ। बीकानेर जब भी आना होता है मुझे ऐसा लगता है मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, लाडनू के बाद अगर मैं अपना दूसरा घर किसी शहर को समझता हूँ, आप लोगों की आत्मीयता का कायल हूँ, वो शहर बीकानेर है। मंच से जुड़ा हुआ कवि हूँ, करीब करीब देश के तमाम बड़े शहरों में भी जाना होता है और राजस्थान के तमाम बड़े शहरों में तो खैर जाना होता ही होता है, लेकिन बीकानेर के लोगों का जो आत्मीय भाव है वो श्लाघनीय है। पुनश्च इसके लिए आप सबका विनम्र आभार। यदि संभव हो का ये संगीत जो है वो निरंतर गूंजता रहा अंतर्मन में, और ख़ास तौर पे मुझे ये अच्छा इसलिए लगा कि हमारी नौजवान पीढ़ी जो अपने एग्रेशन के तौर पे जानी जाती है, आक्रामकता के तौर पे जानी जाती है, अगर उस नौजवान पीढ़ी का कोई रचनाकार इतनी विनम्रता और इतनी शालीनता के साथ अगर ये कहे कि यदि संभव हो, इफ इट इज पॉसिबल, तो फिर आना ही आना था। क्रमशः तीसरे और चौथे क्रम पर वाक और स्मृति आती है। वाक अर्थात वाणी की शक्ति को ही विस्तारित रूप काव्य सृजन है, जो अनादि काल से कलाओं में सिरमौर माना जाता रहा है। अगर परिभाषा की बात करें तो मेरी नजर में आचार्य विश्वनाथ द्वारा दी गई कविता की परिभाषा वाक्यम रसात्मकम काव्यम श्रेष्ठतम है, क्योंकि जो वाक्य रस की अनुभूति कराए वही काव्य है।
1: लेखक का परिचय दिया कार्यक्रम के संयोजक योगेश राजस्थानी ने।
3: आनंद सर आज बड़े भावुक होंगे मुझे पता है, अब तो ये साहित्यिक दृष्टि से सोच के कविताएं लिखते हैं, पहला ऐसे नहीं था। शुरुआत जब हुआ करती थी तो आप सब लोग एक नाम को जानते होंगे, नवदीप बीकानेरी। आनंद सर उनके साथ काफ़ी रहते थे, तो इनकी जो शुरुआती कविताएं हैं तो उस तरीके की है, हंसी मजाक की है। रमक जमक के लिए इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, वैवाहिक गीत लिखे शुरू शुरू में, और जो लोग इनके स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा आनंद सर ने उन वीडियोज़ में डांस भी किया था। अब शायद ये खुद ही उस बारे में सोच के हंसते होंगे कि वो रमक जमक आपने सब नहीं सुना है वो गाना। उसके बाद एक गाना शहर में बहुत पॉपुलर हुआ कि छोड़ना जीमण भाई, जो लोग शहर के रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। रैप चला था जीमण रैप करके, वो बहुत फेमस हुआ, वो भी आनंद सर ने लिखा। उसके बाद कुछ चाय पे कविताएं आई, उसके बाद गली में आसपास जो रहने वाले लोग हैं उन पे कविताएं आई। घर गली के पास एक आदमी था जो नहाता नहीं था, तो दलदरी पे कविता लिखी इन्होंने। फिर पता चला कि गली में एक आदमी रहता है, उसके पैर बहुत पतले पतले हैं, तो कीकरिया काका उसको संबोधित करते हुए इन्होंने कविता लिखी। और लिखी तो लिखी, उस व्यक्ति को इनवाइट करके सुनाई भी बिठा के।
1: मुख्य अतिथि कवि कथाकार श्री मालचंद तिवाड़ी ने अपने शब्दों में पुस्तक एवं कवि के लेखन पर टिप्पणी करते हुए कहा,
4: किसी भी भारतीय भाषा के लिए ऐसा कोई मानकीकरण संस्थान भारत में नहीं है जो उस तरह से मोहर लगा दे जिस तरह से हम खाने की सामग्री पर लगाते हैं कि साहब घी लाना है तो एक मार्क देख के ले आओ। आप भाषा में कोई एक मार्क नहीं देख सकते। भाषा में एक मार्क ये होता है कि उसमें आपकी दिलचस्पी कितनी है। कह निकलूंगा तो कलकल करता बहन निकलूंगा, सुख का गान सुनाते थोड़ा दुख भी सह निकलूंगा। किसी बुलंदी की कोई अभिलाषा शेष नहीं है, किसी बुलंदी की कोई अभिलाषा शेष नहीं है, राह प्रेम से यहाँ और प्रेम से रह निकलूंगा। तो आज इस सभा में आनंद के गीतों से और गीत लगभग जितने हैं, मैं एक आध गीत चुन के पढ़ना चाहता था लेकिन सब लगभग कुछ तो आनंद ने खुद और कुछ उद्धरण करने वालों ने, कुछ योगेश ने, फिर राज विद्रोही जी ने लगभग और हरीश ने उद्धृत कर दिए, तो मैं बहुत सहृदय भाव से आनंद को बधाई देता हूँ और यही कहता हूँ कि बेटा इस काम को हल्के में मत लेना थोड़ा।
1: कार्यक्रम के अध्यक्ष साहित्यकार श्री मधु आचार्य आशावादी ने अपने अध्यक्ष उद्बोधन में कहा,
5: मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर वैदिक साहित्य की तरफ जाएंगे

0: आपको पता चलेगा कि साहित्य की हर विधा में लिखे जाने वाले को काव्य कहा जाता है। और मालदी ने वही उदाहरण दिया था कि अतुकांत में भी काव्य कैसे लय कैसे उपलब्ध रहती है। आनंद ने एक छंद को लेके सब प्रयोग किया। हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस परंपरा में साहित्य की जाकर खड़ा होना चाहते हैं। हमें इस बात का भान होना चाहिए, चाहे वो आप कविता में जाएं, चाहे आप कहानी में जाएं, उसकी परंपरा का भान होना जरूरी है। मालदी ने रविंद्रनाथ टैगोर के उदाहरण से बहुत अच्छा बताया, मैं तो उससे भी पीछे की बात कहता हूं। हिंदी में भी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कवि हुए हैं। मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ, शमशेर को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, महादेवी को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, उस परंपरा को नहीं जानेंगे, क्योंकि एक साहित्य का अच्छा विद्यार्थी, रोज वाली बात रिपीट करके कहता हूँ कि वही होता है जो अपने कंधे पर अतीत को रखता है, जीता वर्तमान में है और नज़र भविष्य पर रखता है। इसलिए आप कभी भी अपनी परंपरा से अपने आप को विलग नहीं कर सकते। इसलिए ये याद रखें कि आप किस फील्ड में और किस विधा में जा रहे हैं। अर्जुन जी का हमेशा पांचम वेद का एक उदाहरण मैं दिया करता हूँ सबको, कि जब पंचम वेद लिखा गया और जब ये कहा गया देवताओं से कि इसे खेलिए, तब देवताओं ने इनकार किया था कि हम इसको नहीं खेल सकते, ये हमारे बस में नहीं है। तब उनको बड़ा इंद्र को आश्चर्य हुआ कि जो काम देवता नहीं कर सकते फिर वो करेगा कौन। उन्होंने देवताओं से पूछा कि आप मुझे बता दीजिए कि कौन खेलेगा। तब उनका जवाब था, ये काम ऋषि करेंगे, क्योंकि एक ऋषि ही अपने जीवन में बार बार जीता है और बार बार मरता है, एक साहित्यकार ही अपने जीवन में अपनी रचनाओं में बार बार जीता है बार बार मरता है, उसे समझना चाहिए कि मैं ऋषि कर्म में जा रहा हूँ, उस परंपरा का निर्वाह करता हूँ। ऋषि कर्म में हम जाएंगे तो उसके अपने कुछ बंधन हैं, उसके अपने कुछ नियम हैं और उसके अपने कुछ कायदे हैं, वो स्वीकारने ही पड़ेंगे हमको। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मालदी ने सब कुछ बता दिया। एक बात और सुरजीत पात्र की बात से उदाहरण देके कहना चाहूँगा। हम दिल्ली में बैठे थे, सुरजीत पात्र हमारे बीकानेर भी हैं, माल जी के भी अच्छे मित्र हैं, अर्जुन जी के भी अच्छे मित्र हैं, पद्मश्री अब तो खैर चले गए दुनिया से। बात हो रही थी कि कविता के पाठक क्यों नहीं है और कविता के लोग क्यों नहीं है जो कविता को पसंद करते, जबकि पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलर विधा साहित्य की थी तो कविता थी। तब उन्होंने एक लाइन में जो बात समझाई वो ये थी कि पहले कविता सुनाने की चीज थी, अब कवियों ने उसे पढ़ाने की चीज बना दिया। कविता पढ़ी नहीं जाती, कविता सुनाई जाती है। और इस नजरिए से अगर मैं कहूं कि तुमने गीत का माध्यम अपनाया तो बहुत अच्छा किया।
1: इस कार्यक्रम में आनंद मस्ताना का लिखा गीत यदि संभव हो छाया रहा। गीत को संगीतबद्ध किया था स्थानीय संगीतज्ञ श्री गौरी शंकर सोनी ने। आइए सुनते हैं एक झलक।

श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं ऐसी जगह जहां बच्चों को सुबह से रात तक के सभी कार्य सुसंस्कारित कराने के उद्देश्य से एक स्थान पर रखा जाता है। ये स्थान है एक निजी संस्थान का, जहां ऐसे घुमंतु या आर्थिक रूप

से बहुत ही कमजोर परिवारों के बच्चे जिन्हें इस आवासीय छात्रावास में निशुल्क शिक्षा, भोजन आदि दिए जाते हैं। सुबह दैनिक कार्य से निवृत्त होकर पूजा पाठ, प्रार्थना, योग, ध्यान और फिर शिक्षण कार्य, दोपहर का भोजन, थोड़ा आराम, फिर शाम को खेल कूद, संध्या प्रार्थना आदि के बाद रात्रि भोजन और फिर समय पर सोने की आदत, सभी कुछ सिखाया जाता है इस छात्रावास में। आइए अब आपको भी ले चलते हैं इसी छात्रावास में। छात्रावास में जब हम पहुंचे तो शाम का वक्त था, तब सांध्यकालीन प्रार्थना आदि हो रहे थे। आप भी सुनिए।

0: और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं उन बच्चों के पास जो इस छात्रावास में रहते हैं। क्या कहते हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे?
1: नाम सत्यम कुमार, कक्षा षष्ठी, स्थान बिहार।
2: अच्छा, यहाँ पर जो है कितने दिन हो गए, कैसा लग रहा है और सुबह से शाम तक क्या करते हो?
1: यहाँ पे मेरे को 2 साल हो गए रहते हुए, और सुबह सुबह 4:30 बजे जागरण होता है, उसके बाद दैनिक कार्य, उसके बाद शारीरिक के बाद स्नान व सेवा कार्य, उसके बाद एकात्मता स्तोत्रम, उसके बाद विद्यालय, विद्यालय के आने के बाद कपड़े चेंज कर भोजन, भोजन के बाद विश्रांति 1.5 घंटे, उसका स्वाध्याय, उसके बाद सेवा कार्य, उसके बाद वंदना, उसके बाद वापस से स्वाध्याय, उसके बाद दीप विसर्जन।
3: राम किशोर, यहाँ पर सीख लिया मैंने बहुत कुछ। यहाँ पर वंदना भी बोलनी सीख गया, सेवा कार्य सीख गया।
0: छात्रावास के सह अधीक्षक ने यहाँ की व्यवस्थाओं आदि पर प्रकाश डालते हुए कहा।
4: जी, मेरा नाम महेंद्र है, मैं इस छात्रावास का सह अधीक्षक हूँ। जिस छात्रावास के भैयाओं से अभी आपने बातचीत की है, भजन गीत सुने हैं, ये सभी बच्चे अपने जो घुमंतू समाज के बच्चे होते हैं, पिछड़ी बस्तियों से बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनको शिक्षा देने में असमर्थ होते हैं, या फिर उनके दादा परदादा किन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने काम ही नहीं किया, नहीं उन्होंने शिक्षा को देखा कि शिक्षा किस प्रकार की, शिक्षा को जान नहीं पाए, ऐसे बालकों को लाकर शिक्षा ग्रहण करवाते हैं और उनका आगे बढ़ाते हैं। निःशुल्क यहाँ रखते हैं, उनसे कुछ भी नहीं लेते हैं, और एकदम अच्छा अनुशासित शिक्षित करके यहाँ से बच्चों को भेजते हैं।
0: ये था आज का बीकानेर दर्पण। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्रीमती पुनीत बिश्नोई की, और वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का। अगले अंक तक अनुमति दीजिए, नमस्कार।
5: अभी श्रोता सुन रहे थे बीकानेर दर्पण। संध्या के 6:30 होते हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
6: ने पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राज्य में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ीं, अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। 79,450 करोड़ रुपए से अधिक की ये रिफाइनरी प्रदेश के औद्योगिक और पेट्रोलियम सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगी। हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम से सालाना 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का शोधन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। उन्होंने चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4-लेन निर्माण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये परियोजना विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से राजस्थान में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी रिफाइनिंग क्षमता में लगातार विस्तार किया है और देश आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला राष्ट्र बन चुका है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वैश्विक संकट के बावजूद घरेलू रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित रखने में सफलता हासिल की। समारोह के दौरान श्री मोदी ने सरकारी सेवा में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने एलपीजी टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी के मैन कंट्रोल यूनिट का अवलोकन कर कच्चे तेल की शोधन प्रक्रिया, तकनीकों और उत्पादों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रिफाइनरी परिसर में खेजड़ी का पौधा भी लगाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पूरी दुनिया को 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने समय पर लिए गए निर्णयों, प्रभावी रणनीति, संसाधनों के संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति के बल पर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश ईंधन संकट से जूझ रहे थे, तब भारत ने स्थिति का सही आकलन करते हुए दूरदर्शी नीति अपनाई और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे राजस्थान के लिए गौरव का क्षण बताया। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज समूचा देश और राजस्थान विकास की गति पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
2: आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक, आर्थिक

0: विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और यह सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का, ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
1: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से बना यह टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के हिसाब से तैयार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। प्रदेश भर में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालयों पर हुए कार्यक्रमों में जिला प्रभारी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान 54,000 से अधिक युवाओं को रोजगार किट वितरित किए गए। इनमें प्रधानमंत्री के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में नियुक्ति पत्र सौंपे। जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित रोजगार उत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। डीग में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सवाईमाधोपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और चूरू में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि विभाग ने प्रदेश को जैविक खेती का मॉडल बनाने के लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच के प्रयास तेज किए हैं। कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने आज कोटा में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि किसानों को जैविक उत्पादों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के लिए जिलों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी।
2: अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमारी थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसान को हमने ये इनको आदेशित किया अधिकारियों को, किसानों के पास जाएं, कैसी प्रक्रिया होती है स्वयं संपादित करके उसके घर बैठे हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो घर पे बैठे कराएं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है किसान के वो कई बार बिक नहीं पाते, तो हमने इसकी शुरुआत सियाम संस्था है हमारा की है, इसमें हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी हमारे संस्थान है, वहाँ हर जगह हम जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अपने प्रोडक्ट लाके निशुल्क उनको जगह उपलब्ध कराएं।
1: सिरोही जिले के आबूराज स्थित ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आज से विधि और न्याय मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। दो दिन के सम्मेलन में देश में न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक सुधारों और कानूनों पर देश भर से आए विधिवेत्ता विचार विमर्श कर रहे हैं। इस दौरान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुसार देश के न्यायिक क्षेत्र में कार्य योजना पर भी मंथन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 12 से 18 जुलाई तक आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 अब 9,651 पदों के लिए होगी। गौरतलब है कि आयोग ने शुद्धि पत्र के जरिए पूर्व में पदों की संख्या बढ़ाकर 10,537 कर दी थी, जिसे कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले पर आयोग के सचिव ने आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान बताया कि मूल पदों में अधिकतम 50% तक की ही बढ़ोतरी की जा सकती है। सुनवाई के बाद आयोग ने शुद्धि पत्र जारी करते हुए 9,651 पद अधिसूचित किए हैं। राज्य में मॉनसून की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। करीब सप्ताह भर की देरी से आए मॉनसूनी बादलों ने बीते 24 घंटों में दक्षिणी

0: पूर्वी जिलों के साथ ही पश्चिमी जिलों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू से होकर गुजर रही है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 5-7 दिन मानसून सक्रिय रहने और अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की भी चेतावनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राज्य में मानसून की गतिविधियां बढ़ीं। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मॉनसून, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी अनेक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के साथ साथ विकास कार्यों की भी लगातार समीक्षा कर रहा है। आज की जिले की चिट्ठी में इन सभी पर बात करेंगे। जिले में पिछले दिनों मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिला। कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश थमने के बाद उमस बढ़ गई है। दूसरी ओर धान की रोपाई का काम शुरू होने से किसान खेतों में जुट गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। इसके साथ ही घग्गर नदी में पानी की संभावना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित की गई और नदी के तटबंधों के मरम्मत का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ. खुशहाल यादव लगातार शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी काम करने के निर्देश दे रहे हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद में अनियमितताओं की जाँच भी जारी है। कृषि विपणन विभाग ने जांच के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी विक्रय के मामले सामने आने की पुष्टि की है। विभाग के अनुसार दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों और आढ़तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 3 दिन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के लगभग 2 लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा की 2 बूंद जिंदगी की पिलाई, जो निर्धारित लक्ष्य का 78.70% रहा। CMHO डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर छूटे बच्चों को दवा पिलाई। अभियान में 11,780 पोलियो वैक्सीन वायल का उपयोग किया गया। शेष बच्चों तक पहुँचने के लिए फॉलो अप अभियान जारी है। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बीते दिनों 1 दिवसीय रोजगार शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। शिविर में निजी कंपनियों, प्रशिक्षण संस्थानों और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से सैकड़ों युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया। रोजगार विभाग ने साल भर ऐसे शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। जिले के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को गैर संचारी रोग कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर 2रा स्थान प्राप्त हुआ है। CMHO ने बताया कि समयबद्ध स्क्रीनिंग, नियमित उपचार, फॉलो अप, डेटा गुणवत्ता में सुधार और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ये उपलब्धि मिली है। जिले में उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की व्यापक स्क्रीनिंग की गई। हाल ही में राजकीय मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में

0: शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले 60 भामाशाहों को शिक्षा श्री सम्मान तथा 24 प्रेरकों को प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने दानदाताओं की सराहना करते हुए उनके योगदान के वीडियो जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शित करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस और प्रशासन ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की। गांव-गांव जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया। जिला प्रशासन के मिशन बुनियाद के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 400 से अधिक ईंट भट्टों पर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक परिवारों के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीमों ने स्वास्थ्य जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, बच्चों का टीकाकरण, कुपोषण की पहचान, एनीमिया जांच और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। श्रमिकों को स्वच्छता, मौसमी बीमारियों तथा नशा मुक्ति के प्रति भी जागरूक किया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ, जिसमें 4000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपी। 1,05,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाला विकास रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा भया काम देश ने समर्पित कीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश री बरकत माए मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई हूँ। राष्ट्रपति सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी। और राज्य में चौमासा री बिरखा तेज भी। आवता कुछ दिन माए उगनी और लंकाऊ हल्का माए भारी बारिश री चेतावनी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालोतरा जिला रा पचपदरा माए देश रो पहलो ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स देश ने सौंपियो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार का न्यू मिलर 79,450 करोड़ रुपयों बत्ता खर्चों बनाई जी ई रिफाइनरी माए सालाना 90 लाख मीट्रिक टन कच्चो तेल साफ करियो चावेला। ई मौके प्रधानमंत्री 1,05,000 करोड़ रुपया रा खर्च वाला पेट्रोकेमिकल्स शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली और जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा चरण रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपिया। वह चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेलवे लेन ने दोवड़ी बनावण री परियोजना और नेशनल हाईवे नंबर 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 ने 4 लेन री बनावण रा काम री शुरुआत कीनी। श्री मोदी 1,000 मेगावाट बूता वाली बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना ये जनता ने सौंपी। प्रधानमंत्री राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा हल्काऊं बिजली निकासी सारू 1,900 करोड़ रुपयों बत्ता खर्चों बनाई जी ट्रांसमिशन लाइन रोई उद्घाटन कीनो। ये मौके वे कहो के रिफाइनरी री आ परियोजना विकसित और खुदरे पान उबो भारत बनावन री दिशा माए खास कदम है। श्री मोदी कहो के तेल साफ करन रा ई कारखानाओं प्रदेश माए मोकला लोगां सारू नौकरी धंधा रा मौका बनेला और औद्योगिक विकास और तेज वेला।
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात

0: कर देते हैं।
1: श्री मोदी कहो के पश्चिम एशिया संकट रे बावजूद भारत टेम सर करी जिया फैसला असरदार रणनीति साधना रा संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति रे पाण ई चुनौती रो कामयाबी सागे सामो कीनो। व कहो के दुनिया रा कई देश ईंधन री परेशानियों जूझ रिया हा, वहां भगत ही भारत आगे री सोच उ नीति अपनार देश री ऊर्जा हिफाजत तय कीनी।
0: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया, औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: प्रधानमंत्री कहो के भारत तेल साफ करण रा बूता ने लगातार बढ़ावन सागे आज दुनिया रो रिफाइनिंग बूता वालो चौथो मोटो देश बन गयो है। श्री मोदी कहो के सरकार दुनिया माए तेल गैस रा संकट पीछे रसोई गैस रा मोल माथे काबू राखण माए कामयाबी हासिल कीनी। जलसारा दौरान वे नवी सरकारी नौकरी लागण वाला नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपया। ई मौके प्रधानमंत्री रसोई गैस भरिया टैंकर ही रवाना कीना। श्री मोदी रिफाइनरी री मेन कंट्रोल यूनिट रो दौरो कैरर कच्चा तेल न साफ करण री प्रक्रिया तकनीक और उत्पादन री जानकारी लीनी। वह एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत रिफाइनरी परिसर माए खेजड़ी रो पौधो ही रोप्यो। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रधानमंत्री रो आभार जताता थका तेल साफ करण रा कारखाना रा उद्घाटन ने राजस्थान सारू माथो ऊंचो करण वालो बतायो। श्री शर्मा कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए पूरो देश और राजस्थान लगातार विकास कर रियो है।
0: आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और यह सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
1: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्री, जनता रा नुमाइंदा और मोटी तादाद में जनता मौजूद रही। इन पहली प्रधानमंत्री जोधपुर में हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल भवन रो उद्घाटन कीनो। ई मौके वे संशोधित उड़ान योजना री शुरुआत कीनी। 28,840 करोड़ रुपए री ई योजना रो मकसद आवता 10 साल में जनता ने हवाई सेवा मुहैया करावनु है। कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती मौजूद रहा। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव राखी जियो। जिला मुख्यालय माथे राखी जिया कार्यक्रम में माए जिला रा प्रभारी मंत्री और जनता रा नुमाइंदा सरकारी महकमा माए नुई नौकरी लागण वाला ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपया। इस दौरान 54,000 नौजवाना ने रोजगार किट दिया जिया। आ कार्यक्रम में माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा पचपदरा माए राखी जिया कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण बताई जियो। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर माए नियुक्ति पत्र दीना। जोधपुर माए राखी जिया रोजगार उत्सव माए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सागे राज्य रा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल समेत जनता रा कई नुमाइंदा शामिल हुआ। डीग माए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, सवाई माधोपुर माए प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, सवाई माधोपुर माए किरोड़ी लाल मीणा और चूरू माए प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत नवी नौकरी लागण वाला ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपया। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई न शुरू

0: जिल्ला 13 अगस्त ताई चालन वाला पावर सत्र सारू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे दीनी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सत्र माए देश रा भला सारू खास मुद्दा माथे सार्थक बहस चर्चा और फैसला करण माथे ध्यान दियो जावेला। कृषि विभाग प्रदेश ने जैविक खेती रा हलका माए आदर्श बनावण सारू जिला स्तर माथे सोशल मीडिया अकाउंट मनार बत्ताऊं बत्ता काश्तकारां ताई पहुंच बधावण री कोशिश तेज करती नी है। कृषि आयुक्त नरेश गोयल आज कोटा माए राखी जाए कार्यक्रम माए बतायो कि किसाना ने जैविक उत्पादन ने बेचण लायक बनावण जनता ताई वारी जानकारी पुगावण और सर्टिफिकेशन री जानकारी दी जावेला। वे बतायो कि जैविक उत्पादन की बिक्री सारू जिला माए ठौड़ मुहैया कराई जावेला।
1: अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमारी थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसान को हमने ये इनको आदेशित किया अधिकारियों को किसानों के पास जाएं कैसी प्रक्रिया होती है स्वयं संपादित करके उसके घर बैठे हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो घर पे बैठे कराएं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है किसान के वो कई बार बिक नहीं पाते, तो हमने इसकी शुरुआत सियाम संस्था है हमारा की है, इसमें हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जो भी हमारे संस्थान है ऑफिसेज है वहाँ हर जगह हम जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अपने प्रोडक्ट लाके निशुल्क उनको जगह उपलब्ध कराएं।
0: सिरोही जिला रा आबू राज माए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माए आज विधि और न्याय मंत्रालय री खास उपलब्धियां वारा माए राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला रो उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कीनो। दो दिन रा ई सम्मेलन माए देश माए न्याय व्यवस्था प्रशासनिक सुधार और कानून बारा माए देश भर आया कानून रा जानकार विचार कर रहा है। अरब मौसम राज्य माए वह रही चौमासारी बिरखा बीच लाड़ला 24 घंटा माए प्रदेश लंकाऊ उगनी जिला सागे आतुणी हल्का माए कई ठोड़ा चोखो में बरसियो। मौसम महकमा रे मुजब मानसून री उत्तरी सीमा उदयपुर अजमेर झुंझुनू वहती निकल रही है। विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन माए राज्य रा कुछ और हल्का माए चौमासारी बिरखा वेवन रा आसार है। जयपुर भरतपुर कोटा उदयपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माए आवता 5-7 दिन चौमासारी बिरखा चालती रेवन री संभावना है। इन दौरान उगनी और लंकाऊ उगनी हल्का माए कठे कठे भारी और कठे कठे घनी भारी बारिश सारू चेताईचियो है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपी। 1,05,000 करोड़ रुपया बत्ता खर्च वाला विकास रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा फिया काम देश ने समर्पित कीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश री बरकत माए मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई उ राष्ट्रपति सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी। और राज्य माए चौमासारी बिरखा तेज हुई। आवता कुछ दिन माए उगनी और लंकाऊ हल्का माए भारी बारिश री चेतावनी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारे जयपुर केंद्र से राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण। संध्या के 7 बजते हैं। गौधुली बेला में खेतों की सौंधी महक और चौपालों की गूंज लेकर हाजिर हैं गूंजे गांव गुआड़। अब प्रसारित होने जा रहा है आपका सबसे लोकप्रिय फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुआड़। एक फरमाइशी मंच जहां लोग धुने अपनी ही बोली बोलती हैं। ये कार्यक्रम राजस्थान की मिट्टी की सौंधी धनक देता है। खेतों की हलचल बरसात की खुशबू चौपाल की कहावतें मेलों की चहल पहल धरती पुत्रों के वो गीत गाथाएं या रोजमर्रा की मेहनत की वो गूंज हर गीत में होती हमारी मातृभूमि के अपनत्व की भारी महक वो सौंधी गंध हर गीत में गांव का दिल लेकर के आए हैं ग्रामीण जगत कार्यक्रम में आपके साथ ही डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा और अश्विनी व्यास। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में सुनेंगे गूंजे गांव गुआड़। इसमें शामिल होंगे आपके ईमेल और फरमाइशी पत्र।

0: कार्यक्रम सुनना सगला भाया और बहना ने आप रहे तले भरत कुमार जाजड़ा
1: और अश्विनी व्यासरा आजरा खणा खणा
0: राम राम
1: राम राम भरत भाई राम राम
0: अश्विनी भाई आज तो देखो शनिवार हो और शनिवार हो पर गूंजे गांव गुआड़ कार्यक्रम तो भाई लोग फरमाइश बाँच नहीं हुए बीरो जोश ही निराल हो रहे और थारी आवाज रे मैंने आबारो जोश दिखियो
1: बिल्कुल
0: राम राम इतने जोश रे साथ करियो नहीं मैंने भी टाइम इठा पड़ गयो कि थे तो आज जो है भाई लोग घणो घणा कागदिया घणो घणा मेल जो है शामिल करना चाह रही हो
1: भरत भाई बात तो थी बिल्कुल लाख टकेरी कही है ग्रामीण जगत बीकानेर एट द रेट gmail.com पर जिका भी मेल आसी भी मैं जिका भी संदेश लिखोड़ा सी बे अपन लाइव बांचा आज ही पूरे कार्यक्रम में और देखो गीतड़ला तो अपन ने सुना नहीं है
0: देखो मेल थे बांचो नहीं तो खातो बांच गयो कई भाई ने ठाई कौन पड़े थोड़ी धीरे धीरे एक दोबारा बांच
1: बिल्कुल तो ग्रामीण जगत बीकानेर एट द रेट gmail.com ई मेल आई डी पर जिका भी भाई लोग मेल भेज सी तो आप अभी ने लाइव बोलर सुना सर और भाई लोग आप रो नाम और गीतड़ो लाइव सुन सकसी
0: इरे अलावा मैंने कागज भी तो लिख सको और कागज रो ठिकानों में आपने बता दूं कार्यक्रम गूंजे गांव गुवाड़ द्वारा केंद्र निदेशक ढोलामरु चैनल आकाशवाणी बीकानेर छोटो सी ठिकानो ऐसा आप पोस्ट कार्ड माते लिख दो वो पोस्ट कार्ड मार के पहुंच जैसी और मैं आप रो नाम बांस देवा
1: और भरत भाई देखो मेल तो मैं खोल और बैठे हूँ लाइव और लगातार मेल आ रहा है ठीक सात बजी चार मेल अपन है लगातार मिलिया है
0: और इर अलावा अबार भी आ रहा है और लगातार आता रहसी पर इर अलावा आपारा मेल तो हमेशा ही खुला रहे खाली अबार की बात थोड़ी है थे कणी भी कदई भी माने मेल कर सको मैं शनिवार उलेर अगले शनिवार तक रे बीच में जितना मेल उड़ावे बीर मैनू छाटा और कोशिश करा कि ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर सको
1: तो भरत भाई अबार जी को मेल आयो मेल दी एक विशेषता है बार देशु कठे सु भी संदेशो भेजो जा सके तो अबार अपन खने जी को मेल आयो है वो आयो है सलम्बपुर कांकेर सु फागू राम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव रो इरे सागे सागे अपन खने खेतल हरियाणा सु जयवीर सिंह ठाकुर अनिल शर्मा रो भी मेल आयोड़ो है पूरे परिवार ने साथ है कार्यक्रम ने सुन रहा है और संदेशों दे रहा है कि बिरखा में सब ध्यान रखे एक मेल भरत भाई आयोड़ो है बागपत उत्तर प्रदेश सो संजय ढींगिया नमन ढींगिया और अपार ढींगिया रो तो भरत भाई कार्यक्रम ने आप शुरू करा और जिया जिया मेल और संदेशा आता रहसी जिया आप बांसता रहसा और कार्यक्रम आगे बढ़ा
0: आधा तो मत बांचो थोड़ा और बांस दो
1: बिल्कुल
0: शुरू कर दिया जने अब कहीं है कि भाई लोग ने चवा के ज्यादा हूँ ज्यादा बांध सका नाम तो भोपालगढ़ राजस्थान से भी एक मेल आउड़े धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा पूजा परिहार टाउनशिप सेक्टर 8 भुलाईसू अनुश्री प्रदीप यामिनी और वीणा कालिया गांव जाखोद राजस्थान सु शंभुदयाल खटक विमला देवी खटक अमरजीत खटक सुंदरलाल खटक योगेश कुमार खटक दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक
1: तो सुना कार्यक्रम रो बापा पहलड़ो गीत

0: शहर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो भरत भाई गीत बहुत चोखो सुनायो, काली कलायन उमटी मानसिंह चौहान रो गायडो।
3: और देखो ज्या थे बात खत्म करो, मने तो एक ही जल्दी रहे के ईमेल और कागजिया ज्यादा शामिल करा। कागजियो है ग्राम पोस्ट मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारह सू, श्रवण लाल योगी, गायत्री योगी, उमा मयंक और योगी परिवार, सेक्टर 5, कुड़ी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर सू, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गरवी, गोविंदपुरा, नीम का थाना सू, दातार सिंह, संगीता, तुषार, रिंकी शेखावत और साथी, और सेक्टर 18, जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा सू, विनय मोहन, मीनाक्षी, प्लोमर, ईसानी।
2: सागे सागे मेल भी लगातार आ रहा है, और अपन कने सादुल शहर सू मेल आयो है राम कुमार रेवाड, चंद्रकला रेवाड़, ए संदेशों भी लिख भेजो है। एक ये कि मायड़ भाषा रहा सगड़ा गीत या ने चोखा लाग रहा है और सब परिवार गीत ला सुन रहा है। और अगलो मेल जी को है वो आयोड़ो है अशोक कुमार जी रो। आर कुमार जी रो पंजाब सू आयोड़ो है मेल, वडिंग खेड़ा सू, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, ऐ सगला परिवार ने साथ बैठ और कार्यक्रम सुन रहा है। गुंज गांव गुआड़ वास्तविक बहुत रंग बिरंगो मेल आया है भरत भाई। मैं धाना बताऊं कि बीर माय ने ऐ लिखे है कि कार्यक्रम याने बहुत पसंद आ रही है, दुर्गा कॉलोनी हाँसी। देखो कठे हाँसीर कठे आपा, लेकिन मेल रिया विशेषता है कि बार घड़ी में 7:13 हो यार बठे सुबिया संदेश भेजो और अठे अपन कने पहुँचो। दुर्गा कॉलोनी सु राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू।
3: एक मेल अबार अबार आयो है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ सू, और भाटापारा जो है बिलासपुर रखने है वही है भाटापारा। ठीक है, तो भाटापारा सु लिखनला है हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। और इन अलावा एक और आयो है मारखन है गाँव फरासी हिसार सू, राजकुमार डूडी, प्रमोद डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी।
2: सागे सागे भरत भाई एक मोहाली सू आयोडो है चंडीगढ़ सू, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर और कैथलरो, ए भी सब परिवार बैठ ये कार्यक्रम ने सुन रहा है। तो बीकानेर ग्रामीण जगत @gmail.com पर अगर आप मेल कर सा तो आप बियाना नाम और संदेशा भी बांट सका। लेकिन भरत भाई अब समय हो गया कार्यक्रम में अगलो गीतर लो
3: सुनो फिर।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु और पानी के भीतर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। महासागर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, लेकिन आज वो गर्मी, अम्लीकरण और प्रदूषण जैसे बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। कोरल रीफ, मैनग्रोव और समुद्री घास जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण तेजी से नष्ट हो रहे हैं, लेकिन महासागर, हवा और लहरों से स्वच्छ ऊर्जा, स्वस्थ मछली पकड़ने के जरिए और समुद्री जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र देकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद भी करते हैं। इसलिए जलवायु को स्थिर और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महासागर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ ने कुछ ही दशकों में लगभग 50% कोरल खो दिए हैं।
2: मैं आकाशवाणी

0: 90 साल की आपकी आकाश वाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बैलोगा देखो, मेल री पांदरी जकी है घनी लंबी है, मेल री सूची जकी है कागजारी पांदरी भी घनी लंबी है।

0: एक मेल माखन थोड़ी देर पहले आयो है अबार गांव नरगोड़ा छत्तीसगढ़ सू और लिखन वाला है कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ए मैंने अबार थोड़ी देर पहले भेजो है। इसके अलावा मुकेश कश्यप जो है ए भी मैंने मेल भेजो है और नाम सागे है यारे शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर ए है जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश हूँ ए मैंने दोपहर आज मेल करियो
1: सागे सागे भरत भाई एक मेल अपन कने झारखंड गिरिडीह जिकी जगह है बठे सुआडो है भेजन वाला है मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन बाबू मिफरा बीबी और सादिया। एक मेल अपन कने आयो है जिला मुरादाबाद सू सोनू राजपाल काजल मानवी लक्ष्य और मोहिनी रो सगले परिवार है सागे बैठ ए ग्रामीण जगत कार्यक्रम ने लाइव सुन रहा है और यहाँ संदेश

0: की जगह है, बठे सुहाड़ो है, वे भेजने वाला है मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन बाबू, मिफरा बीबी और सादिया। एक मेल अपन अगर आयो है जिला मुरादाबाद सो, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य और मोहिनी रो सगले परिवार है सागे बैठ ई ग्रामीण जगत कार्यक्रम ने लाइव सुन रहा है। और यहाँ संदेश में लिखो है कि कार्यक्रम राज्य का गीत लावे यानी बहुत दाया आ रहा है। गांव खरकड़ा 24 ईसू गोलू सागर सीताराम अंशिका और तमन्ना रो मेल भी आयो है। एक मेल है बागपतसु संजय नमन और अपार रो। भरत भाई इतना सारा मेल लगातार आ रहा है कि ढूंढने में मुश्किल हो रही है। जितने थे एक आ दो छापो जी को आयोडो है वो भी बांचर बता दो।
1: बिल्कुल थाने बताऊँ अबार। देखो बाबा रामदेव रोड गंगा शहर सु दिव्या सारस्वत मुरली मनोहर सारस्वत और लता सारस्वत माने मेल करियो है। गांव कुंदनपुरा जिला बाड़मेर सु भी एक मेल आयो है लेकिन आपरो नाम सावड़ लिखियो को नहीं कागज में सावड़ पढ़ीज नहीं रियो है। हरियाणा सु साहिल कागरा मोनी कागरा प्रिंस बोर्ड सीताराम कागरा और तन्वी बोट एमा ने भेजियो है। सरधना मेरठ सु आदि जैन अंश जैन भव्य जैन।
0: तो सुना पा कार्यक्रम रो अगलो गीत।

0: तो भरत भाई अबार स्टूडियो की घड़ी में 7:33 हो यार अबार अपन खन्ने एक मेल आयो है नांदेड़ यातालासू शंकर लाल जायसवाल गणेश लाल जायसवाल शुभ प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल रो तो लगातार मेल अपन खन्ने आ रहा है और जिका जिका नया मेल आ रहा आप वे भी नाम बाँच रहा सागे जी थे बतायो कि पूरे सप्ताह जिका मेल पुराना आयड़ा हुए बिया ने भी आप ई कार्यक्रम में शामिल करा तो अपन खन्ने एक मेल आयड़ो है
1: कुछ मेल है
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: आप रविवार सो लेर बुधवार बीच रहा मैंने शुक्र गुरुवार तक मान लो एवडे भी मैंने कुछ छांटुड़ा है दादरी गेट भिवानी सू कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा सनावत मध्य प्रदेश सू दिलीप मालाकर जितेंद्र मालाकर योगेश मालाकर मुस्कान मालाकर और सुनीता मालाकर इला पटियाला रोड गुंजडुंड वारा सू आमिर हुसैन बेगम तैयबा बेबी फौजिया आहिल हुसैन और अरहान हुसैन
0: सागे सागे भरत भाई अबार 7:34 पर अपन खाने जगह नियमित श्रोता है सुभाष खत्री कमला कॉलोनी बीकानेर सुबियानो भी अपन ने मेल प्राप्त हुए है और वे भी कार्यक्रम ने बहुत दाय करो है
1: रायगढ़ सु आयो है रोहित जयलक्ष्मी ऋषभ अंश लक्ष्मी और जय मंत्री इरे अलावा नांगलोई दिल्ली सु मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्डा नई दिल्ली करमपुरा वी आई पी रोड सु गौरव मानसी मदान हरियाणा साथी
0: तो चलो आप सुना कार्यक्रम में अगलो गीत लो

0: तो लगातार भरतभाई मेला पण खन आ रहा है। अब आर 7:39 माथे गंगानगर राजस्थान रघुनाथपुरा सो अपन खन मेला है। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षिता और खुशी गोस्वामी। सागे सागे भरतभाई एक बात मैं थाने पहला और बता दूं कि एक अपन नियमित श्रोता है अशोक कुमार, वे लगातार आज बार बार मेल भेज रहा है। ये तो भी कार्यक्रम रो आनंद ले रहा, लेकिन बार बार आप बियाणो संदेशों पढ़ को नहीं पा रहा।
1: इसके अलावा आप देखो छेखड़ दो तोरो है, थोड़ा और नाम बांस दूँ। बेताब रेडियो श्रोता क्लब बिहार सू वसीम अक्रम, यामिनी खातून, गुड़िया खातून, झज्जर हरियाणा सू बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और पानीपत सू नरेश मल्होत्रा। सेरी वडनेर महाराष्ट्र सू बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर और चोटाला हरियाणा सू दारा पंडित, बुलबुल जोशी और दिवानशु जोशी रे वास्ते निजर करासा
0: ओ गीत।

0: भाई लोग अबे घड़ी सर कर रही है कि विदा लेने रूप कथा आ गया है, घना ही मेल बाकी रह गया, घना ही कागजिया बाकी रह गया, कोशिश कर सा के जगह रेउड़ा है बिना अगले सप्ताह फिर शामिल करा। आज माने सीख दो सा भरत कुमार जादड़ा ने
1: और अश्वनी व्यासरा आजरा घना घना राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। इसमें आज आपने अपनी फरमाइशी लोकगीतों को सुना, जिसने आपने ईमेल के द्वारा या फिर पत्रों के द्वारा हमें भेजा था कि आपको ये गीत सुनवाया जाए। और आपकी इन गीतों को सुनने में सहायता की डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा और अश्विनी व्यास ने। ग्रामीण जगत कार्यक्रम प्रत्येक दिवस आप सुनते हैं संध्या 7 बजे से। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स पर संध्या के 7:45 होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या की शुरुआत के वक्त यदि ईश्वर का ध्यान हो जाए तो बेहतरीन होता है। तो आइए कुछ ईश भक्ति में अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। सुनते हैं कुछ भजन और श्लोक।

पूर्णाहुति के इस मंत्र के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन समारोह किया गया। इसकी रेडियो रिपोर्ट का अनुप्रसारण हमारे जयपुर केंद्र से हो रहा है, तो आइए इस रिपोर्ट के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे जयपुर केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से राजस्थान के पचपतरा में 79,000 करोड़ की राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण किया गया। ये देश का पहला एकीकृत रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल परिसर है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से देश के पेट्रोलियम क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। 9 MMTPA क्षमता वाले इस रिफाइनरी परिसर में 29 प्रसंस्करण इकाइयां काम करेंगी। इन इकाइयों से लाखों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के आरंभ में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऊन से बना पट्टू ओढ़ाकर स्वागत किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस परियोजना के चरणबद्ध विकास की जानकारी दी। आपने इसे विश्व स्तर की नवीनतम पेट्रोलियम परियोजना बताया।
1: आज का दिन केवल राजस्थान और भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। विश्व भर में पिछले 10 वर्षों में बहुत कम ग्रीनफील्ड रिफाइनरीज बनी है। इनमें से 2 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किए। 2016 में IOCL की पारादीप रिफाइनरी और आज यहां पचपादरा में HRRL रिफाइनरी जो कि HPCL और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है। आज के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को मेरा धन्यवाद, जिनका इस परियोजना को पूरा करने में सक्रिय योगदान रहा। सबसे बढ़कर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कर कमलों द्वारा आज इस रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस परियोजना को पूरा करने में काफी चैलेंजेस आए, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहां क्रूड या कच्चा तेल को रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए एक 490 किलोमीटर लंबी मुद्रा से एक डेडिकेटेड पाइपलाइन बिछाई। मंगला तेल क्षेत्र से एक 75 किलोमीटर की लोकल क्रूड पाइपलाइन बनाई गई। पानी के लिए 230 किलोमीटर लंबी एक अलग पाइपलाइन द्वारा नचना जलाशय से पानी लाने की व्यवस्था की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका स्पष्ट संकल्प था कि थार क्षेत्र को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यह परियोजना सितंबर 2013 में इस परियोजना का की शुरुआत हुई। अप्रैल 2017 से तत्कालीन राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन दिसंबर 2023 में जब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी तब ये हालत बदली और ये परियोजना पूरी गति से आगे बढ़ी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित महामहिम राज्यपाल महोदय और अन्य आमंत्रित मेहमानों का अभिनंदन किया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान से हमेशा विशेष लगाव रहा है। आज आप जब भी राजस्थान पधारे हैं आपने सदैव राजस्थान को नई विकास की नई नई सौगातें देने का काम किया है। आप 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान में पधारे थे। आपकी प्रेरणा से राजस्थान में निवेश 35 लाख करोड़ के रिकॉर्ड समझौते हुए थे, लेकिन आप उसमें 9 लाख करोड़ से ज्यादा के कार्य धरातल पर उतर गए। सरकार का एक साल पूर्ण होने पर 17 दिसंबर 2024 को आपने रामजल सेतु लिंक परियोजना के साथ 46,365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया था। माननीय प्रधान

0: पाटन सिंदूर के बाद बीकानेर में बना रहे थे, तब आपने अमृत भारत स्टेशन के साथ 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी। पिछले साल सितंबर में बांसवाड़ा में आपने माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास सहित 1,80,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य के उपहार राजस्थान को आपने दिया था। इस वर्ष 28 फरवरी को अजमेर में आपने करीब 22,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर एवं 17,000 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ देशव्यापी HPV वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया था। आपने प्रदेश को भारतमाला परियोजना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जैसी ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। आज भी आपके कर कमलों से प्रदेश को 1,05,000 करोड़ से अधिक के विकास के कार्यों की सौगात मिलने जा रही है।
1: राजस्थान रिफाइनरी लोकार्पण के साथ 13,000 करोड़ की लागत की जयपुर मेट्रो फेज 2, 34,000 करोड़ रुपए की यमुना जल परियोजना का उद्घाटन किया गया। इससे शेखावटी क्षेत्र में जल अभाव से मुक्ति मिलेगी। 75 लाख आबादी निर्बाध जल प्रवाह से लाभान्वित होगी।
2: राम जल सेतु और यमुना जल परियोजनाएं राज्य के जल प्रबंधन को नई दिशा दे रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर जरूरतमंद परिवार को अपना घर दे रही है और सड़क विकास गांवों को शहरों से जोड़ रहा है।
1: इस अवसर पर ऊर्जा, नागरिक उड्डयन एवं रेल विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया गया।
3: रेगिस्तान का रत्न HPCL राजस्थान रिफाइनरी और चूरू सादुलपुर चूरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण कार्य। अब हम आप सभी की तालियों के उद्घोष के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्साह के अतिरिक्त के साथ आग्रह करते हैं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर हम सभी राजस्थानियों को ये सौगात प्रदान करने की कृपा करें। मान्यवर,
1: समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न आयोजनों में उपस्थित हुए लाखों लोगों का अभिवादन किया। आपने इस उपस्थिति को सरकार के विकास कार्यों में सहभागिता बताया।
4: आज राजस्थान की धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं। यहां जो हादसा हुआ उसके बाद इतनी तेजी से काम पूरा कर लेना, ये भी परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है। आप सबने दिखा दिया है, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है।

0: भाइयों बहनों, आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा। इस कार्यक्रम में जो लोग जोधपुर से जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। भाइयों बहनों, शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी के उत्पादों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
2: जब राजस्थान विकास

0: चल रही भर्तियां भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों से युवा हुनरमंद बन रहे हैं। शिक्षा में सुविधाएं बढ़ी हैं। डायरेक्ट बेनिफिट, साइकिल, स्कूटी जैसी पहल बच्चों के सपनों को गति दे रही है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के साथ राजस्थान में महिलाएं नई ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं।
1: आकाशवाणी बाड़मेर द्वारा उत्पादित इस रेडियो रिपोर्ट के निर्देशक थे चमनलाल चौधरी और प्रस्तुतकर्ता दिनेश कुमार सैनी, वाचन स्वर मुकेश पाल सिंह।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा।
3: श्रोताओं, अभी आप हमारे जयपुर केंद्र से सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। इसका अनुप्रसारण हमारे जयपुर केंद्र से किया गया। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर।
4: हिंदुस्तान के हर नाम से सब हमको है पहचानते, तान के हम सीना चलते चौड़ में पुरशान से बसता है खुदा यहाँ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल, जहां हर धड़कन में भारत बसता है। आज की विशेष पेशकश में हम वे गीत लेकर आए हैं जो हमारी मिट्टी की खुशबू, हमारे शूरवीरों की गाथा और हमारे युवा सपनों की उड़ान गाते हैं। ये रचनाएं सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वादे हैं, ये यादें हैं, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे संयुक्त संकल्प की आवाज है, गूंज है। जब गूंजता है तो कोई देशभक्ति गीत, तब हर सुर में इतिहास की एक कहानी, एक ताल में कर्तव्य की पुकार, और हर बोल में प्रेम का एक पैगाम छिपा होता है।

0: देशवासी सब है भाई भाई मेरे देश में।
1: यही वे गीत थे जिनमें बसा है हमारे देश का जज्बा। आपके साथ हम सुन रहे थे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 होने को लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत।

उमेश मेहंदी रत्ता की आवाज में अभी आप ये लोकगीत सुन रहे थे। लीजिए पेश है मारा चूना जोशी।

इस लोकगीत के साथ ही लोकगीत संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 106 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होते हैं। अब से गुजर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और उसके पश्चात रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया, आप सभी यही नहीं रुक

0: वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
4: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज

0: यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने

0: इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश माघो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे से

ये धुन कुछ कहती है, जैसे किसी कभी दरगाहों की शान समझा जाता था। न सिर्फ न धीरे धीरे अपने किलों और दिलों को छुआ, बल्कि सिनेमा की धड़कनों में भी अपनी जगह बना ली। वह आलाप, वह ताल, वह दुआ जैसी आवाज़ें जब पर्दे पर आई तो दर्शकों को एक अलग ही तरह की आध्यात्मिकता का रोमांच अनुभव हुआ।

कभी खुशी कभी गम, मुगले आजम इन जैसी फिल्मों में कव्वाली ने दृश्य को न सिर्फ सजाया बल्कि कहानी की संवेदनाओं को भी और अधिक गहरा दिया। कव्वाली के बोल अक्सर सीधे दिल पर असर किया करते हैं, भले ही वो प्यार हो, बिछोह या वियोग हो, ईश्वर की खोज, सामाजिक आलोचना और फिल्मी परिधान में विषय और भी व्यापक दर्शक तक पहुंचते हैं। संगीतकारों ने पारंपरिक रियाज में प्रयोग किए तबले और डफ के साथ आधुनिक ऑर्केस्ट्रा मिलाकर नई धुनें भी बनाई और नतीजा क्या निकला, वह पुराना सूफियाना जज्बा नए दौर की आवाज में और अधिक खिलकर के आया।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: धुंधली सिराहों में तेरी यादों के दिए जलते हैं, हर सांस के ओस में तेरे आवाज के पल टलते हैं।

तेरा इश्क है मेरी आरजू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, दिल इश्क, जिस्म इश्क और जान इश्क है, कव्वाली की ये अदा। अब यहीं पर संपन्न करते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम के तहत। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:30 होने को आपसे कुछ देर में सुनेंगे आप हमारे दिल्ली केंद्र से साहित्य भारती।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:30 होते हैं। आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से साहित्य भारती।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया सी याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा। प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने

0: परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट, भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद्व सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है।

0: लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।

0: मेघ मन और मालवा अभी आपने ये रूपक सुना आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का साथियों कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहां एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता बंधन दमन और शोषण में लिपटी हुई है निराशा के बीच वहां कोई उम्मीद भी नहीं साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में अपने प्रभाव में प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया
2: देखिए ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा

0: लिखा है, तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं, समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
0: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थी जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट के आया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसकी जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है प्रेक्षकत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है और उसमें जो आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है इसमें बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही है। अच्छा, शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को ठोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उन पर बुंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था और जब राम सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे। और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इसे भी वो मांगती है कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इससे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फ भी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको

0: समझा रहा है तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहां बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए, उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहु पठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं भी, जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन यह है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखिए कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, इस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन ये है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने थे, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बता न पाना।

0: ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। He now presents Rag Hamir, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्यलय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विथ राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र

चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए।

0: लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to 8th of this month. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from tomorrow till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. The Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an